FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 44 सेकेंड हुए।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 26 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 44 सेकेंड हुए।

0: मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विचार।
1: किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, काली को गोरी पर, न गोरी को काली पर कोई बड़ाई और फक्र नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। खुदा के निकट सबसे बड़ा वही है जो तुम में सबसे अधिक संयम वाला है। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ न करो, बल्कि अदल व इंसाफ करो, क्योंकि वह संयम और परहेजगारी से ज्यादा करीब है। सवाल करना सिर्फ इन तीन में से किसी एक के लिए वैध या जायज है। किसी पर कोई बोझ या तावान डाल दिया जाए तो उसके लिए सवाल करना जायज है, ताकि वह जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए, उसके बाद वो सवाल करने से रुक जाए। किसी पर कोई ऐसी घटना आ जाए जिससे उसका तमाम माल तबाह हो जाए तो उसके लिए सवाल करना वैध है, यहाँ तक कि उसका जरिया माश दुरुस्त हो जाए, जिससे वो व्यक्ति जो मोहताजी और फाके में मुब्तिला हो तो उसको भी सवाल करना वैध है, यहाँ तक कि कोई जरिया माश हासिल हो जाए। इनके अतिरिक्त दूसरों को सवाल करना हराम है, और जो सवाल करे वो हराम खाता है। तुम इसे बेहतरीन मनुष्य वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतरीन इंसान हूँ। एक शरीफ इंसान ही स्त्रियों की इज्जत करता है, वो जलील है जो इनकी तौहीन करता है। तुम्हारे नौकर गुलाम तुम्हारे भाई हैं जिनको तुम्हारा मातहत बनाया गया है, लिहाजा जिसका भाई उसके मातहत हो तो वो उसे वही खिलाए जो वो खाता हो, और वही पहनाए जो वो पहनता हो, और उनसे हद से ज्यादा काम न कराए। अगर तुम हद से बढ़कर उनसे कोई काम कराओ तो उसमें उनका हाथ बताओ। खुदा की कसम तुम्हें नेक कामों की हिदायत करनी होगी और बुरे कामों से लोगों को रोकना होगा। इसके बाद तुम जालिम के हाथ को रोकोगे और उसे हक की ओर मोड़ कर लाओगे, ताकि वो अपने आप को वास्तविकता और सत्यता में सीमित रखे, वरना खुदा तुम्हारे दिलों को बिगाड़ देगा। और जिस तरह नाफरमान बनी इसराइल पर लानत भेजी थी, उसी तरह तुम पर भी लानत भेजेगा। खुदा हर वो कार्य स्वीकार करता है जो उसी के लिए किया गया हो और उसके जरिए से उसकी प्रसन्नता प्राप्त की जाए। जिस काम में खालिक की नाफरमानी होती हो उसमें मखलूक की फरमाबरदारी नहीं है। खुदा उस कौम को साफ सुथरा नहीं बनाता जो किसी ताकतवर से उसको तकलीफ दिए बगैर किसी कमजोर का हक दिला सके। जब कोई किसी को कर्जा दे तो वो उसका उपहार यानी उसे तोहफा न कबूल करे। और आपने ये भी फरमाया कि जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विचार सुने। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जहाँ दिल में इबादत, नियत में सच्चाई, इरादे पाक हों, वहाँ खुदा की रहमत बरसती है। सच्चे दिल से किया गया हर सजदा, कभी सुकून बनकर, कभी सब्र बनकर और कभी खुदा के करम बनकर इंसान पर बरसता है।

संत वचन अमृत धारा व्याकुल मन को तृप्त करे, भटके पथिक को राह दिखाकर जीवन को पावन करे। संत वचन जो अपनाए, जीवन उसका धन्य हो जाए, मिट जाए सब अंधियारा, प्रभु चरणों में मन रम जाए।

एक ही ईश्वर, एक ही मालिक, एक है उसका धाम। रूप अनेक दिखाई देते पर एक ही उसका नाम। नाम भले ही अलग अलग हो, सबका एक संदेश, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया की ज्योति जले जब मन में न रहे को।

जिस हृदय में प्रेम का सागर वहीं प्रभु का धाम, मानव सेवा ही सच्ची पूजा प्रेम ही प्रभु का नाम। जहां प्रेम की गंगा बहती वहीं प्रभु की कृपा बरसती, जहां प्रेम की ज्योति है जलती वहीं मानवता उजली हो जाती।

अनगिन रूप तेरे हे ईश्वर, अनगिनत है नाम। मंदिर में है तेरी मूरत, मस्जिद में बरसे तेरा नूर। कण कण में वास है तेरा, तू है कृपा का धान। जो तेरी राह में चलता उसे मिलता तेरी कृपा का दान।

प्रभु चरणों में जो शीश झुकाए उसका हर दुख दूर हो जाए। संसार की राह कितनी भी कठिन हो, प्रभु चरणों का सहारा सदा संबल बन जाता है। प्रभु चरणों की भक्ति ही जीवन का सच्चा धन है, यही मन की शांति, यही परम आनंद है।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, अनूप जलोटा, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में भक्ति वंदना सुनी। आपका दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आइए जानते हैं 26 जून की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस है। इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी और वर्ष 1988 से इसे पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इस दिन विशेष को मनाने का उद्देश्य है नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक सहयोग सशक्त बनाना। इस वर्ष का विषय है विश्व मादक पदार्थ समस्या, स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियां और अभिनव समाधान। ये थीम साइबर तस्करी और नशे जैसी गंभीर समस्या के सबसे प्रभावी समाधान, जागरूकता, शिक्षा और समय रहते की गई रोकथाम पर जोर देती है। श्रोताओं, आज यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। 26 जून वर्ष 1987 को कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर प्रभाव में आया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है यातना के शिकार लोगों को न्याय दिलाना, उनके पुनर्वास को बढ़ावा देना और पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का सम्मान और मानवीय गरिमा की रक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। श्रोताओं, 26 जून वर्ष 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। इस विजय के बाद शेरशाह ने भारत के शासक के रूप में सड़क निर्माण, डाक व्यवस्था, प्रशासन और मुद्रा प्रणाली में व्यापक सुधार किए, जो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। 26 जून वर्ष 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के समापन पर विश्व के 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यही ऐतिहासिक दस्तावेज आगे चलकर विश्व शांति, सहयोग और मानवाधिकारों की रक्षा का आधार बना। इस चार्टर के कारण ही 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। श्रोताओं, विश्व के लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। श्रोताओं, आज महान उपन्यासकार, कवि, पत्रकार और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती है। उनका जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्हें बंगाल का साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी से राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना की अलख जगाई। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 8 अप्रैल वर्ष 1894 को इनका देहावसान हो गया। अशोताव, आज ही के दिन जन्म हुआ था महान समाज सुधारक और कोल्हापुर के दूरदर्शी शासक छत्रपति शाहूजी महाराज का। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और कुरूतियों को दूर करने के लिए अनेक कठोर नियम बनाए। सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, सामाजिक समानता और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके सुधारों ने आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की नींव मजबूत की। 6 मई वर्ष 1922 को इनका निधन हो गया। आज पुण्यतिथि है जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर साहब की। भारतीय सिनेमा को ऊंचाइयों में पहुँचाने में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा। दोस्ताना, गुमराह, गाइड, प्रेम पुजारी, अग्निपथ, कभी खुशी कभी गम उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। उन्होंने भारतीय मूल्यों, परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों को पर्दे पर जीवंत किया। अर्शोताओं, आज मुहर्रम है। इस्लामिक कैलेंडर में साल का पहला महीना मुहर्रम और इसकी 10वीं तारीख को आसूरा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसी दिन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन साहब ने सच्चाई, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों के साथ शहादत दे दी थी। और इस जानकारी के साथ संपन्न होती है आज की बात।
FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आप सभी को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आज विविधा में बात अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस और समाज में बढ़ती नशे की दुष्प्रवृत्ति पर। श्रोताओं, आज की दुनिया में लाइफस्टाइल एक फैशन सा बन गई है। अच्छे कपड़े, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड चीज़ें और सोशल मीडिया की चमक दमक भरी लाइफ आज आधुनिकता की पहचान बन गई है। मित्रों के साथ पार्टियां करना एक फैशन सा बनता जा रहा है और देर रात तक चलने वाली इन पार्टियों में

डांस, म्यूजिक और नशे में झूमते युवाओं को बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, गांवों, कस्बों में भी देखा जा सकता है। दिखावे की संस्कृति और क्षणिक रोमांच की चाह में आज हमारी युवा पीढ़ी की अंधेरी दुनिया नशे की चपेट में है और युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय है। तनाव से राहत पाने और कुछ पलों के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नशा आज दीमक की तरह हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली गोलियों और इंजेक्शंस के जरिए शरीर में पहुंचने वाला ये नशीला मादक पदार्थ वैश्विक चुनौती बन मानव समाज को पतन की ओर धकेल रहा है। श्रोता, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1987 में 26 जून को मादक पदार्थ और अवैध तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये दिन नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता

दुष्प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1987 में 26 जून को मादक पदार्थ और अवैध तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये दिन नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही नशा छोड़ने के लिए भी समाज को प्रेरित करता है। हाल के वर्षों में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स देखें तो ये बताती हैं श्रोताओं कि दुनिया भर में मादक पदार्थों का सेवन और उनकी अवैध तस्करी लगातार बढ़ रही है। समाज शास्त्रियों की राय में जिस समाज में नशे की दुष्प्रवृत्ति बढ़ती है उस समाज में घरेलू हिंसा, बेरोजगारी, सड़क दुर्घटनाएं, आर्थिक संकट, परिवार का विघटन और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं कि किसी भी तरह का नशा व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता, विवेक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। श्रोताओं, शौक, आदत या लत बनकर नशा आज व्यक्ति की असमय मृत्यु का कारण बन रहा है। आत्महत्या की घटनाएं नशे के कारण और ज्यादा बढ़ रही हैं। और नशे की लत की समस्या के कारणों पर गौर करें तो काम का तनाव, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, पारिवारिक माहौल और नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता समाज में इस समस्या को बढ़ाने का मुख्य कारण है। श्रोताओं, सवाल ये नहीं कि नशा हमारे समाज में कैसे फैल रहा है, आज गंभीर सवाल ये है कि हम इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। अपने घर, परिवार, बच्चों, अपने साथियों, स्कूल, कॉलेज और अपने समाज में इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम हम उठा रहे हैं। श्रोताओं, नशे की लत सिर्फ सेहत खराब नहीं करती, जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने की शुरुआत हम अपने परिवार से करें, अपने आप से करें। परिवार में आपसी संवाद बढ़ाकर, नैतिक मूल्यों के साथ अच्छी शिक्षा, संस्कार भरा माहौल बनाकर, किशोरों और युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों के साथ ही खेल गतिविधियों से जोड़कर और नशे के खिलाफ अभियान चलाकर हम इस बुराई को काफ़ी हद तक रोकने में और नशा मुक्त समाज का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। हम सब का मिला जुला सहयोग ही इस नशे की लत को हमारे समाज से दूर कर सकता है। और श्रोताओं, असली लाइफ स्टाइल भी वही है जिसमें चरित्र, संस्कार और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन के प्रति सम्मान हो। इसलिए फैशन नहीं स्वास्थ्य चुनिए, दिखावा नहीं चरित्र चुनिए और नशा नहीं जिंदगी चुनिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। अपनी जिंदगी का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। आज विविधा में इतना ही। शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान से अगला प्रसंग। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा का समय रहता है प्रातः 7:50 और 8:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर चर्चा होगी सामाजिक बने रहें विषय पर। साथ ही सुनिएगा सामाजिक बने रहने की खूबसूरती विषय पर श्रीमती पार्वती भंडारी वरिष्ठ महिला अल्मोड़ा से प्रीति जाटव की क्षेत्र संकलित बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1315वीं कड़ी हम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर और खेती की बातें कार्यक्रम होगा 2:30 पर, जिसमें आज डॉक्टर कंचन आर्या की वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ता का विषय रहेगा दुधारू पशुओं में प्रमुख समस्या। युवा श्रोता अपने दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुनते हैं संध्या 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अच्छे श्रोता बने और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। सिने जगत के तहत जानेंगे नितिन मुकेश के बारे में, साथ ही होगा आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम में संध्या 5:45 पर आज चर्चा होगी मुहर्रम, छत्रपति साहू जी महाराज जयंती, गतिशीलता और संतुलन के लिए योग और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी निषेध दिवस पर। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:41 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम में संध्या 7:00 आज की बातें क्रम में जानेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती के बारे में, साथ ही सुनिएगा खेती बचाओ जैविक खेती के फायदे विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। आज रात्रि 8:00 सुनिएगा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की जद में युवा कैसे करे पहचान और नशा मुक्ति का समाधान विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दुर्वा पंत से भेंट करता होंगे संजय जोशी। समय याद रखिएगा आज रात 8:00। श्रोता हमारे केंद्र से कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर, पूर्वाहन 11:30 पर लोकसुर, दोपहर 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत और संध्या 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में। सुगम संगीत सुनिएगा पूर्वाहन 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, मध्याह्न 1:15 पर, रात्रि 8:20 पर सबरस कार्यक्रम में और रात्रि 10:00। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे प्रातः 9:05 पर गीत निर्झर कार्यक्रम में, पूर्वाहन 10:35 पर सुरबहार, 11:00 सैनिकों के लिए, मध्याह्न 12:00 मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत, संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 9:30 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के तहत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से 136वां प्रसंग। आकाशवाणी की संगीतमय प्रस्तुति को स्वर दिया है हरिहरन, मिताली सिंह और उत्तरा केलकर ने, और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से आज का प्रसंग। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से संवाद करेंगे। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपये होगा। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। और चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित और अनुशासित यात्रा की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे खेतों का भ्रमण कर फसलों का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच पंतनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है। बैठक में विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों तक उनके लाभ की पहुंच तथा भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा श्री चौहान पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये का शुल्क देना होगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावित होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोई या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदलने में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोई या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदलने में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: राज्य सरकार हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भव्य मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना करेगी। ये संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राच्य विद्याओं के संरक्षण, संवर्धन तथा शोध का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कल ऋषिकेश मैदान का निरीक्षण कर प्रस्तावित योजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रमुख सचिव ने कहा कि संस्थान में योग, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य प्राच्य विद्याओं पर शोध की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम से एक प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे प्राचीन जितने भी विधाएं थी, खास करके कला, वास्तुकला, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इस तरह के जितने योगा, उसको किस तरह से उस पर शोध किया जाए और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शोध संस्थान बनाया जाए, तो उसके लिए हरिद्वार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक हरिद्वार के लिए एक फ्यूचर में पर्यटन स्थल के तौर पर काम करे।
0: श्री सुधांशु ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राज्य में चारधाम यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रबंधन के कारण यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और पवित्रता को अक्षुण रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा की गरिमा बनाए रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
4: यात्रा के नियम हमारे पहले के समय से, ऋषि मुनियों के समय से, हमारे पूर्वजों के समय से यात्रा के नियम बने हुए हैं। यात्रा में साफ सफाई से रहना है, नियम संयम से रहना है, तो ये यात्रा धर्म के लिए है।

0: पर्यटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं और तीर्थाटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि भाई वहाँ पर पवित्रता बनी रहे, अच्छे से लोगों के दर्शन हो, लोगों की सुरक्षा का प्रबंध हो, उनको कोई परेशानी न हो।
1: कर लो जी चारों
2: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि पोलियो उन्मूलन अभियान राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे पोलियो की खुराक प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि जिले में 28 जून को 1500 से अधिक बूथों के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इनमें 1300 स्थायी बूथ, 82 ट्रांजिट बूथ और 24 मोबाइल बूथ शामिल हैं। इसके बाद 29 जून से 4 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मेरी साथी निशी भाटिया।
3: धन्यवाद रागनी। कर्णप्रयाग और नगरासो निहंग विवाद को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ से सह चित्र प्रकाशित किया है। इस खबर में दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समाचार का शीर्षक है, सीमा पर बैरिकेटिंग तोड़ उत्तराखंड में घुसे निहंग। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखा है, हेमकुंड यात्रा के लिए बनेगी SOP। वेनेजुएला भूकंप पर नवोदय टाइम की सुर्खी है, भूकंप के झटकों से दहला वेनेजुएला, 164 की मौत, 971 घायल, 7.2 और 7.5 के थे तोड़ लगातार झटके। बहुचर्चित LUCC घोटाले पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, 25 करोड़ रुपए की 23 संपत्तियां कुर्क, 1,60,00,000 निवेशकों से 419 करोड़ रुपए की ठगी प्रकरण में 7 मुख्य आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार।
2: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने अवैध निर्माण और भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए ऋषिकेश में एक व्यावसायिक भवन को सील कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार जांच में पाया गया कि मेन हरिद्वार रोड स्थित भरत विहार में ये निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान समारोह में किसानों से संवाद करेंगे। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क पहली जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपये होगा। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और चारधाम यात्रा में करीब अब तक 40,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित और अनुशासित यात्रा की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

0: ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं काशी दत्त शर्मा के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

लोक मंजरी कार्यक्रम में आज आपने काशी दत्त शर्मा के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत सुने। इसी के साथ लोक मंजरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: महात्मा गांधी एक ओर अहिंसा के उपासक थे, अहिंसा को प्रचंड शस्त्र मानते थे, वहीं दूसरी ओर वे एक महान समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक और विचारक के रूप में उनका योगदान अनुपम है। उन्होंने व्यक्तिगत उत्थान, विशेषतः आत्मिक उत्थान पर बल दिया। जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के सुधार हेतु रचनात्मक संघर्ष किया। उनका सपना था अहिंसक समाज।
1: समाजवाद एक सुंदर शब्द है, और जहां तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा न ऊंचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊंचा नहीं होता, और न पैर जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाज रूपी शरीर के सारे अंग भी समान होते हैं। यही समाजवाद है।

0: बापू सभी धर्मों का सम्मान करते थे।
1: जब तक मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि सभी धर्म समान हैं, और जब तक मेरे मन में दूसरे धर्मों के प्रति भी वैसा सम्मान का भाव नहीं जगता जैसा अपने धर्म के प्रति है, तब तक चारों ओर के इस घनघोर संघर्षमय वातावरण में मैं जीवित ही नहीं रह सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री

मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के स्टार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में

0: गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजैक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि

0: इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added,

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप पंडित कुमार गंधर्व का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को कड़ी सिफारिशों के साथ सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी।

0: ठीक। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद श्री सिंह और मुख्यमंत्री पंतनगर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने क्रोएशिया को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। उधर डलास स्टेडियम में जापान और स्वीडन का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे हैं। अगले राउंड में जापान का सामना 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। इसी बीच कैंसस सिटी में नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3 से हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। बेहद स्वागत आप सभी का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी बातों को इतना दिल से लगा लेते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। कल की टेंशन, कल की गलतियां, कल का डर और इन सब में उलझकर हमारे चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। संस्कृत में एक शब्द है अनित्य, जिसका अर्थ है सब कुछ टेम्परेरी है। हर दुख हर प्रॉब्लम ने गुजर ही जाना है दोस्तों, इसलिए जब भी टेंशन हो गहरी सांस लीजिए, स्माइल कीजिए और धीरे से मूव ऑन कर लीजिए। और अब रुख करते हैं अपने गीत निर्झर कार्यक्रम का। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है चित्चोस फिल्म से और ये गीत आप सबके नाम। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है।

येसुदास और हिमलता की आवाज़ों में ये गीत हमने लिया था चितचोर फिल्म से। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। इसी गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंश राज सिंह। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फरहाज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अभिका, जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार।

कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अंबिका सोनवड़े, साईशा सोनवड़े और परिवार के सभी सदस्य, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा ने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है जलगांव जंक्शन से दिनेश कुमार काले, आदेश कुमार काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। इसी गीत को सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा, गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्कीवाली और फलना झा। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने और पीएस नवहाणकर की, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। आप सभी ने सुनना चाहा है गाइड फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं एस डी बर्मन। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश आपके लिए।

0: दीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: तेरी वाइफा है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक यश जौहर साहब की सुपरहिट पारिवारिक कालजयी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत करने के साथ ही भारतीय सिनेमा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। गुमराह, गाइड, ज्वेल थीव, प्रेम पुजारी, दोस्ताना, हरे रामा हरे कृष्णा, कभी खुशी कभी गम उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर साहब की आज पुण्यतिथि है और उन्हें याद करते हुए उनकी सुपरहिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गीत सुनवाने की फरमाइश हमारे पास आई है। दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन चेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटके, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, ओम बगड़िया, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया और मनीषा चौधरी, छतरपुर नई दिल्ली से दिवाकर, कीर्ति, करण, साक्षी, सुमेर, सोनिया, सोनाली, दिव्या, अजय, महेश, गीता, शुभम और बेबी अनवी, चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी, धन्वंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, रीतु सिंह, संकल्प और कृषिव सिंह। आप सभी ने सुनना चाहा है हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। लीजिए पेश है आप सब की फरमाइश का ये गीत आपके लिए।

श्रोताओं, आज जाने माने अदाकार अर्जुन कपूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपने बेहतरीन अदाकारी से सिने जगत में खास जगह बनाने वाले अदाकार अर्जुन कपूर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म कल हो ना हो का ये गीत सुनवाने का अनुरोध हमसे किया है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से, कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री दरिया

पुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, श्री वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ खर्चे, विठलराव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्रोनो उषा, स्वाति प्रियाग चौधरी और मालती चौधरी, और महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है, अर्जुन कपूर के संगीत निर्देशन से सजी, माफ कीजिएगा, अर्जुन कपूर के बेहतरीन निर्देशन से सजी कल हो ना हो फिल्म का ये गीत साधना सरगम और सुजाता उदित नारायण, सोनू निगम और शंकर महादेवन की आवाज़ों में।

सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम बेलदार, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुसार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, मोनालिसा, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुड़ी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता, और महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानो के गाए दिल तेरा आशिक फिल्म का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। छोटी बलिया मुंबई से अहमद, दुखना सफद, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापस हेड़ा। नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल हौदा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीता कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। सनावत से शेख मूसा बानोबी। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर सोनी। और गांव जाखोद राजस्थान से संभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। आप सब ने सुनना चाहा है आशा भोसले की आवाज़ में वो कौन थी फिल्म का गीत, राजा मेहंदी अली खां के बोलों को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और मोहल्ला, ये सब हमारे

श्रोता हैं जमशेदपुर से और मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी की। इसी गीत को सुनना चाहा है सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज ने। सांगली से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी और तन्वी गौहर। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, भारती बघेल, साहिल और रुक्मणी बघेल। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, नीशु, भानु, प्रकाश और गीतिका खोरवाल। सदर बाजार मारावाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और आयुषी श्रीवास। आप सभी ने सुनना चाहा है वो कौन थी फिल्म का गीत आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये हमने लिया है हीर रांझा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर, फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र

रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ सरगांव बाज़ार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। मान टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू। ग्राम नागर कोहरा जिला नांदगांव से ही हैं जामुन देवी, बेबी आराध्या। और वीरमगाम गुजरात से अजित भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी, जैमिनी भावसार। आप सब ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अपना देश फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के गीतों को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। तो लीजिए पेश है गीत निर्झर कार्यक्रम की ये आखिरी फरमाइश।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए अपना देश फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर यहीं पर संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज़ जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
3: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे

0: वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं पंकज उधास के गाए इस गीत के साथ।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए गुलाम अली को।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

जब बेगम के गाय इस नगरे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सदन अभी तक संपन्न होता है।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत रुद्रपुर में ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत गरीबों को मात्र 3 लाख में आधुनिक फ्लैट मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित ये परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के MIS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। राज्य सरकार और मेला प्रशासन संत समाज के मार्गदर्शन और सुझावों को तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी क्रम में कल अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैरागी अखाड़ा के संत और नया उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर सहित कई संतों से मुलाकात की। इस दौरान कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की जानकारी साझा की गई और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर संतों से सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किया गया। संतों ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, तप, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक महापर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुंभ मेले को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको ने शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से देहरादून में अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत बैंक योग्य शहरी अवसंरचना एवं वित्तीय संसाधनों के जुटाव विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्तों तथा शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद गिरी गोस्वामी निदेशक

0: निरीक्षक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड ने अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का प्रभावी उपयोग करने के लिए समेकित और बैंक योग शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास पर बल दिया। कार्यशाला में शहरी अवसंरचना और वित्त के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियां दी गई। हुडको देहरादून के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला से उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना परियोजना के विकास को नई गति मिलेगी।
1: हाल ही में भारत सरकार ने 1,00,000 करोड़ का एक अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट किया गया, उस संबंध में एक आज उत्तराखंड शासन के जितने नगर निगम और नगर पालिका हैं उनका एक जो है हमने कार्यशाला किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड के जो हमारे जितने नगर हैं और पहाड़ी नगर भी जो हमारे हैं जिसमें आबादी का जो है बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है उसका सुनियोजित विकास किया जा सके। और साथ में जो हमारी जो एक तरह से अर्बन चैलेंज फंड के बारे में जो एलोकेशन भारत सरकार की तरफ से जो है उत्तराखंड को दिया गया है, लगभग 775 करोड़ का एलोकेशन जो है भारत सरकार का अर्बन चैलेंज फंड के लिए दिया गया है और लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड में आ सकती है और एक तरह से सुनियोजित उत्तराखंड का हो सकता है।
0: भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण कर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। आयोग के दल में अपर सचिव अभिषेक तिवारी, अनुभाग अधिकारी गोपाल कृष्ण चाहर और सहायक अनुभाग अधिकारी प्रकाश सिंह शामिल थे। अधिकारियों ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ क्षेत्र में देर रात हुई अतिवृष्टि के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गया। तेज बहाव के साथ आए मलबे से कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। समाचारों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। पूर्वाहन के 10:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है और ये नाम है अपनी अदाकारी से लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले बेमिसाल कलाकार अदाकार दिलीप कुमार साहब का। सुरबहार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं इन्हीं की बेहतरीन फिल्मों के चंद सुरीले सदाबहार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में। ये गीत जिंदगी और कुदरत की खूबसूरती को बेहद अनोखे अंदाज में पेश करता है।

दोस्तों 11 दिसंबर साल 1922 ये वो तारीख थी जब पेशावर शहर की गलियों में नन्हे यूसुफ खान की किलकारियां गूंजी और वक्त के साथ इन किलकारियों की गूंज अदाकार दिलीप कुमार की हर दिल अजीज आवाज़ के रूप में सिने जगत में छा गई, करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। मगर दोस्तों इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र बेहद संघर्ष भरा था और इस संघर्ष की झलक मिलती है दिलीप साहब के हर किरदार में, उनकी लाजवाब अदाकारी में। लीजिए पेश है उनकी बेहतरीन अदाकारी से सजा गांव की सादगी, मोहब्बत और अपनेपन से भरी जिंदगी का एहसास जगाता गंगा जमुना फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

कुछ हमरा बिहक होई बे करी नैन लड़ जाए हैं नैन लड़ जाए हैं तो मनवा मा कसक होई बे करी प्रेम का

thai thai thai thai thai dhak dinak din thak dinak din dhak dinak din thak dinak din dhak आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। और इस कार्यक्रम में आज हम अदाकार दिलीप कुमार की फिल्मों से लिए चंद सुरीले गीत आपको सुनवा रहे हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब इंसानी जज्बातों को बयां करने वाले नायाब फनकार थे। उन्हें एक्टिंग का स्कूल भी कहा जाता था। उन्होंने अपने किरदारों के जरिए लाखों दिलों को रोना, हंसना, मुस्कुराना और प्यार करना सिखाया। हर किरदार को दिल से निभाया। उनकी अपनेपन से भरी आंखों में समाया दर्द और खामोश जज्बात जब किसी किरदार में ढलते तो देखने वाले दिल थाम लेते। आइए सुनते हैं उनकी सुपरहिट फिल्म कोहिनूर का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस गीत में मोहब्बत के इकरार का दिलीप साहब का मासूम अंदाज़ और उनकी अदायगी कमाल की है।

दोस्तों, दिलीप कुमार हर किरदार को दिल से जिया करते थे। कहा जाता है कि दर्द भरे किरदार करते हुए उन्हें दिमागी परेशानी होने लगी थी। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर कोहिनूर और राम और श्याम जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम किया और इसके बाद उनके अभिनय के प्रति समर्पण बढ़ता चला गया। एक और किस्सा उनका काफ़ी मशहूर है, अभिनय के प्रति उनके लगाव का। कोहिनूर फिल्म में सितार बजाने वाले सीन आपने देखे होगा। इस सीन के लिए उन्होंने बाकायदा महीनों तक सितार सीखा था। वो घंटों अपने किरदार के बारे में समझा करते, उसके बाद ही शूटिंग के लिए तैयार होते। उन्होंने एक्टिंग की नई परिभाषा गढ़ी जिससे आज भी प्रेरणा लेते हैं कलाकार। ये गीत उनकी सुपरहिट फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, अपनी बेमिसाल अदाकारी से भारतीय सिनेमा को यादगार फिल्मों का नजराना देने वाले अदाकारी के शाहकार दिलीप कुमार साहब यूं तो ट्रेजिडिंग किंग भी कहलाते हैं, मगर सौदागर, कोहिनूर, राम और श्याम, क्रांति, विधाता जैसी फिल्मों में अपने दमदार किरदार के जरिए और बेमिसाल अदाकारी से उन्होंने साबित किया कि वो हर रोल में परफेक्ट हैं। अपने खामोश अंदाज और आंखों से ही हर तरह का एहसास महसूस कराने वाले दिलीप कुमार साहब सिने जगत के एक ऐसे स्टार हैं जिसकी चमक अभिनय की दुनिया में आज भी रोशन है और हमेशा रोशन रहेगी। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया यहूदी फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है मुकेश ने।

मुकेश के गाए यहूदी फिल्म के गीत के साथ ही सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था सोनू निगम की आवाज़ में एलओसी कारगिल फिल्म से। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत थ्री इडियट्स फिल्म से सोनू निगम और शांतनु मोइत्रा की आवाज़ में।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। गीतकार रानी मलिक और संगीतकार नदीम श्रवण।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं समीर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है फिदा और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है 100 डेज फिल्म का गीत लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में। दिलीप ताहिर के बोलों को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

सैनिक भाइयों लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए 100 डेज फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर।

बाकी पैरोला चल ये स्याली बजारे बाकी मुल्योला बाकी पैरोला चल ये स्याली बजारे अठान्यो न किसा भुरियो चवान्यो न रुमा।

ला बखी पैरोला चले स्याली बाजारे बखी मुल्योला बखी पैरोला चले स्याली बाजारे अठान्यू न किसा भुरियू जो जवान्यू न रुमाले अठान्यू न किसा भुरियू जो जवान्यू न रुमाले चले ये स्याली

वकी मूल्यो ला वकी पैरोला चलिए स्याली बजारे अठान्यो न की सभुरियो चवान्यो न रुमाले चलिए स्याली मंदा

मूल्यों लवखी पैरोला चले स्याली बाजारे वखी मूल्यों लवखी पैरोला चले स्याली बाजारे अठान्यू न की सभुरियो च चवान्यू न रुमाले अठान्यू न की सभुरियो च चवान

बखी मूल्यो ला बखी पैरोला चले स्याली बजारे बखी मूल्यो ला बखी पैरोला चले स्याली बजारे अठान्यो न की सभुरियो चवान्यो न रुमाले चलिए स्याली मदारोली

श्रोताओं, गढ़वाली लोकगीत अभी आपने सुना। कलाकार थे माधुरी बर्थवाल और अनिल भारती। लोकसुर कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत। स्वर दिया है दीवान सिंह कनवाल ने।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। लीजिए अब सुनिए गढ़वाली लोकगीत, गायिका हैं अनीता कंडारी।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांग थिकर स्नेहल नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी पसंद में। श्रोताओं आज के दौर की बात करें यानी नए दौर की बात करें तो आज कई युवा ऐसे कलाकार हैं फिल्मी दुनिया में जिन्होंने अपने दमदार अभिनय के जरिए दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है। हम जिनकी आज बात कर रहे हैं, यूं तो उनका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखता है। पिता मशहूर निर्माता निर्देशक बोनी कपूर, चाचा मशहूर अभिनेता अनिल कपूर संजय कपूर, बहनें अभिनय की दुनिया से जुड़ी हैं सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर। आप समझ ही गए होंगे हम किस मशहूर अभिनेता की आज बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं हम बात कर रहे हैं चर्चित जाने माने अभिनेता अर्जुन कपूर की, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। और आज 26 जून उनका जन्मदिन है तो उन्हें हम ढेर सारी जन्मदिन की अपने कार्यक्रम की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। अर्जुन कपूर ने जब फिल्मों में एंट्री मारी तो दर्शक उनके अभिनय के कायल हो गए और उनके साथ कुछ यूं ही गुनगुना उठे।

सुनो, 26 जून 1985 को मुंबई में जन्म हुआ अर्जुन कपूर का, और इनके पिता जाने माने निर्माता निर्देशक बोनी कपूर और इनकी माँ शौरी, मोना शौरी कपूर थी। और इनकी शिक्षा की बात करें तो अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के चेंबूर स्थित आर्य विद्या मंदिर से की। इसके बाद अभिनेता ने मुंबई के नारसी मोन्जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और नोएडा के एशियाई अकादमी फिल्म और टेलीविज़न से अपनी पढ़ाई पूरी की। अभिनय में उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शिक्षा प्राप्त की, और ये तो उनके शुरुआती दौर की बात है जब वो पढ़ रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखने का सोचा तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म कल हो ना हो इस फिल्म से उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की, और इस तरह उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने से पहले डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। फिर क्या हुआ बताते हैं, पहले सुनते हैं उन पर फिल्माया ये गाना।

तो श्रोतों, जैसा कि आपको बताया कि ये अर्जुन कपूर, फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर और मोना शौरी कपूर के पुत्र हैं। अर्जुन कपूर का जीवन बचपन से ही संघर्षों में रहा। वो कम उम्र में ही अपने पिता से अलग हो गए थे और फिर उनकी माता मोना कपूर का भी निधन हो गया। इस घटना ने अर्जुन कपूर के जीवन को बहुत प्रभावित किया और इसके बाद, जैसा कि आप जानते ही हैं, मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी से इनके पिता ने विवाह किया और अर्जुन कपूर ने भी अपनी जो एक्टिंग की शुरुआत से पहले उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा, कल हो ना हो, इसके अलावा नो एंट्री, वांटेड जैसी फिल्मों में भी वो सहयोगी निर्माता के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और उनका जो जुनून था वो एक्टिंग की दुनिया में था। पढ़ाई में उनका कम मन लगता था और जब वो छोटे थे तो कहते हैं कि वो बहुत, उन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया था, यानी वो बहुत मोटे थे, स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने को तराशा, खुद को तलाशा और एक हैंडसम एक्टर के तौर पर वो आज जाने जाते हैं। और बाद में फिल्मों की दुनिया में उनका कदम रखने का जो इरादा था वो ख्वाब पूरा होने को आया। साल 2012 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया अभिनय की दुनिया में और उनकी पहली फिल्म आई इशक ज़ादे। परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी। तो इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत सराहा और इस फिल्म के गाने भी बेहद मशहूर हुए।

तो श्रोताओं, इशक ज़ादे रोमांटिक एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन हबीब फैजल ने किया था। इसका निर्माण यशराज बैनर तले हुआ और इस फिल्म में अर्जुन कपूर ने शानदार अभिनय किया और दर्शकों और समीक्षकों द्वारा इस फिल्म को खूब सराहना मिली। इसके बाद साल 2014 में टू स्टेट्स फिल्म आई। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसमें अर्जुन कपूर के साथ आलिया भट्ट फिल्मों में इस फिल्म में नज़र आई और ये फिल्म भी दर्शकों ने बेहद पसंद की। ये फिल्म चेतन भगत की नॉवल पर आधारित थी और इस फिल्म के गाने भी बेहद मशहूर हुए।

साल 2014 में ही प्रियंका चोपड़ा रणवीर सिंह के साथ अर्जुन कपूर की फिल्म एक्शन फिल्म थी ये गुंडे रिलीज हुई और इस फिल्म में भी इन दोनों कलाकारों के साथ अर्जुन कपूर के

रुदों टू स्टेट्स गुंडे और फिर साल 2016 में करीना कपूर के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की एंड का में नज़र आए उनके पति की भूमिका में अर्जुन कपूर। ये तीनों फिल्में सुपरहिट रहीं और व्यावसायिक तौर पर भी ये फिल्में बेहद कामयाब रहीं।

अनीस बज़मी की फिल्म मुबारका में अनिल कपूर, इलियाना डी क्रूज और आथिया शेट्टी के साथ अभिनय किया अर्जुन कपूर ने, तो साल 2017 में उन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ मोहित सूरी की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में भी अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई और इस फिल्म को भी लोगों ने खूब सराहा।

श्रोताओं, कहते हैं ना, दुनिया का कोई भी कलाकार हो, सभी ने अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हर तरह के दौर देखे हैं। जीवन के उतार चढ़ाव से अर्जुन कपूर भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, तो कई फिल्में बेहद कामयाब रहीं, तो कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी साबित हुई। लेकिन अर्जुन कपूर ने हार नहीं मानी, अपना संघर्ष जारी रखा और फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा वो बिखेरते रहे हैं। और उनकी फिल्मों में जो चर्चित फिल्में हैं उनके नाम बता दें, औरंगजेब, गुंडे, टू स्टेट्स, फाइंडिंग फैनी, तेवर, की एंड का, हाफ गर्लफ्रेंड, मुबारका, एक विलन रिटर्न्स, सिंघम अगेन, द लेडी किलर जैसे कई फिल्में हैं जिसमें उन्हें हर तरह की दौर देखने को मिले, कभी कामयाबी और कभी नाकामयाबी। बहरहाल संघर्ष जारी है और अपने अभिनय से जो उनकी सजी फिल्में हैं वो दर्शकों ने पसंद की हैं और उनके अभिनय को सराहा है समय समय पर।

फिल्मी दुनिया के अलावा अर्जुन कपूर छोटे पर्दे से भी जुड़े रहते हैं। आईफा पुरस्कार समारोह को वो होस्ट उन्होंने किया है। इसके अलावा एक टेलीविज़न शो खतरों के खिलाड़ी में भी वो सातवां सीज़न उन्होंने होस्ट किया और बेहद मेहनत के साथ वो अपने किरदारों को निभाते हैं फिल्मों में। उनके विविध अभिनय से सजी फिल्में हमने समय समय पर देखी हैं। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि फिल्म इशक ज़ादे, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर के की एक कहानी थी, तो इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग से पहले वो वहाँ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं कभी यूपी नहीं गया था, जुहू में पला बड़ा, लेकिन मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो एक धारणा कि बड़े शहरों के लोग छोटे शहरों के बारे में क्या सोचते हैं, तब मैं भारत को नहीं जानता था। मैं जुहू लोखंडवाला में रहने वाला बॉलीवुड का बच्चा, तो 23 साल की उम्र में जब मैं आदित्य सर से मिला तो मुझे लगा कि देश में किस तरह के दर्शक हैं। मैं वहाँ गया और मैंने एहसास किया और उस फिल्म में जो मैंने किरदार निभाया उसमें कोशिश की कि मैं अपने किरदार को पूरी तरह से उस किरदार को निभा सकूं। तो यही बात उनके हर फिल्म में जो उन्होंने अभिनय किए हैं, सभी फिल्मों में उन्होंने जितने भी अभिनय से सजी अपनी फिल्में पेश की हैं, सभी में जो उनके किरदार हैं वो उन्होंने बेहद मेहनत के साथ और लगन परिश्रम के साथ वो अपने किरदारों को निभाते हैं, तभी वो दर्शकों के दिलों में जगह बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं अर्जुन कपूर को एक बार पुनः देते हैं उनके जन्मदिन की, और चाहेंगे आगे भी वो खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा खूब एंटरटेन करते रहें। आज मेरी पसंद का सफ़र अंजू पांगती के साथ यहीं तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें अब सुनेंगी घर संसार।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी प्रीति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप? उम्मीद करते हैं हमारी सभी बहनें स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और हमारे कार्यक्रम का कर रही होंगी बेसब्री से इंतज़ार। तो चलिए आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों कहते हैं एक पेड़ जितना पुराना होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, है ना, और उसकी छांव उतनी ही घनी होती है। ठीक वैसे ही हमारे समाज के बुजुर्ग उस घनी बरगद की तरह होते हैं जिन्होंने ना जाने कितने मौसम देखे हैं, कितने पतझड़ झीले हैं और अपनी ममता की छांव से पूरे परिवार और समाज को बात कर रखा है। बहनों आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर तो हमारे हजारों दोस्त हैं लेकिन सामाजिकता कहीं पीछे छोड़ गई है। तो बहनों आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक बने रहें। बहनों लेकिन जब हम अपनी पुरानी पीढ़ी खासकर घर समाज की बुजुर्ग महिलाओं को देखते हैं तो सामाजिकता की एक अलग ही पहचान हमारे सामने आती है, क्योंकि अगर सामाजिकता के बारे में कोई हमें अच्छे से बता सकता तो वो है हमारे बुजुर्ग। तो बहनों बातचीत के इसी क्रम में आइए सुनते हैं सामाजिक बने रहने की खूबसूरती विषय पर श्रीमती पार्वती भंडारी वरिष्ठ महिला अल्मोड़ा से की गई बातचीत। स्वागत है पार्वती जी आपका हमारे इस कार्यक्रम घर संसार में।
1: धन्यवाद।
0: पार्वती जी आपके जमाने में सामाजिक होने का क्या मतलब था?
1: देखिए हमारे जमाने में कोई भी इंटरनेट नहीं होता था, एक दिल का कनेक्शन होता था जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते थे और एक दूसरे की बातें सुनते थे और सब जगह हम लोग इकट्ठा बैठ के सारी बातें एक दूसरे से अपनी मन की बात कहते थे। सामाजिक होने का मतलब ये है कि जब हम एक साथ बैठते थे किसी के वहाँ, जैसे कि पापड़ बनाए, अचार बनाया, किसी बेटी की शादी में बैठे वहाँ हर तरह के काम काज में उनका हाथ बटाना, उनकी बातें, इस तरह की कई चीजें होती थी
0: जी। और पार्वती जी देखिए ना, कहते हैं कि पुराने जमाने में जो सामाजिकता थी उसमें लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे।
1: ये बात बहुत बहुत सही है। पहले से लोग एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे और आजकल के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे अपने आप में बहुत अलग हो गए हैं। पहले के बच्चे सब मिलकर बैठते थे, साथ स्कूल जाना और एक साथ एक आंगन में खेलते थे और वो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। आजकल के बच्चे हर इससे अलग हो गए हैं। एक तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं, दूसरा उनका जो भी है हर बात इंटरनेट से वो अपने

0: दोस्त बनाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। एक कमरे में बैठा है तो दूसरा अपने कमरे में है। यहाँ तक कि उनको न अपने कोई दोस्त चाहिए, न उनको अपने कोई रिश्तेदारों से मतलब है, न उनको समय पर खाना है। यही उनके लिए सामाजिकता है और इसीलिए वो अपने आप में बहुत अकेले हो गए।
1: पार्वती जी, एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी नौकरियों या शादियों के सिलसिले में दूर चले जाते हैं या जीवन साथी का साथ छूट जाता है, तो जीवन में एक खालीपन आ जाता है। उस दौर में खुद को सामाजिक रूप से सक्रिय रखना कितना जरूरी है?
0: देखिए, ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसे हर किसी को गुजरना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी, वो बच्चे बाहर चले गए, उसके बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरे हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो गई, जिसके कारण मैंने अपने आप को बहुत उससे संभाला। मैं जैसे कि कहीं कितनी जगह इधर उधर मोहल्ले में जाके अपने से बड़ी महिलाओं के संग बैठ के उनसे कई प्रकार की बातें सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जिसके मेरे मन में काफी उत्साह होता है। इसलिए हम ज्यादा अपने आप को बहुत व्यस्त करते हैं और घूमना, मंदिरों में जाना और भजन कीर्तन सत्संग में, ये हमने अपने लिए एक बहुत मुख्य कारण बनाया। आज के समय में सामाजिक रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम समाज के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, जो हमारे दिल और दिमाग को बूढ़ा नहीं होने देता है। पहले के समय में लोग अकेले भी रहते थे घरों में, बच्चे बाहर होते थे, तब उनको किसी की कोई ऐसी चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वो आपस में पूरा एक मोहल्ला रहता था, जिससे अनेक प्रकार के वहाँ पर लोग अपनी एक साथ बैठ के अपनी मन की बातें करते थे, एक दूसरे का दुख सुख सब एक साथ मिल के बांटते थे। इसलिए आजकल का समय बहुत अलग हो गया है।
1: जी पार्वती जी, जैसे कि आप एक वरिष्ठ महिला हैं, तो आपके समय से लेकर और अभी की पीढ़ी में कितना अंतर आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें बदली हैं, कि आपका बचपन कैसा था और आज का बचपन कैसा है?
0: देखिए, हमने जो अपना समय जिया है वो एक बहुत सुंदर समय था, और आजकल का समय ऐसा है कि सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारे जमाने के बच्चे बहुत अलग थे, आजकल के समय के बच्चे बहुत अलग हैं। जो बच्चे अपने इंटरनेट, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं, पहले के समय में न लैपटॉप था न मोबाइल था, बच्चे एक दूसरे के करीब थे और अपने माँ बापों का हाल पूछने के लिए पहले के समय में चिट्ठियां चलती थी, उसके द्वारा अपने माँ बाप का हाल पूछते थे और समय समय पर वो अपने घर में भी आते थे, अपने माँ बापों को पूछते थे। हर चीज में बहुत अंतर हो गया है।
1: और देखिए ना, पुराना जमाना कैसा था कि दादी नानी की कहानियां सुन के बच्चे बड़े होते थे, आज वो दादी नानी की कहानियां कहीं खो सी गई हैं। पर आज का समय ऐसा है कि माता पिता अपने काम में व्यस्त है और बच्चा अपने काम में व्यस्त है, तो एक ही घर में रहते हुए भी उनको बात करने का मौका नहीं मिलता या वो बात नहीं करते।
0: पहले के समय में बच्चे अपने साथ मिल के अपने माँ बाबों से बातें करते थे, आज ऐसा हो गया कि आज जो मैं देख रही हूँ वो बहुत अलग हो गया है। बच्चे अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं बताते हैं। पहले के बच्चे हर चीज अपने बड़ों से पूछते थे, हर बात शेयर करते थे, और आजकल का समय बिल्कुल अलग हो गया है। बच्चे जाते हैं तो बस वो जाएंगे, इतना ही कहते कि हम जा रहे हैं, उनके अगल बगल में कौन रहता है, क्या करते हैं, ये किसी को कोई पता नहीं होता है। इसलिए ये समय बहुत अलग है, पहले का समय बहुत अलग था।
1: जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कहीं ना कहीं सामाजिक होने का जो एक रोल था कि हमें सामाजिक होना चाहिए, इस बात में भी काफी बदलाव आया है। अक्सर देखा जाता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाती है। युवा कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, और बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। इस जनरेशन गैप को पाटने के लिए आप दोनों पक्षों को क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। आजकल के समय में हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा दोनों हाथ से बजती है।

0: से बोल के उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है, वो बहुत अच्छा सोचते हैं। आजकल के बच्चे हमको पूछ रहे हैं, इतना सोच के वो बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों की व्यस्तता पर कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। उनका रहन सहन, उनका खान पान सब अलग है, और हमें भी उनकी पीढ़ी को समझना होगा। हमारा जीवन और बच्चों का जीवन बहुत अलग है, इसलिए हमें दोनों को अपना अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो बड़े हम हैं, अपनी बात जो हम कहते हैं कि उनसे ये मत करो, वो मत करो, वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने हिसाब से अपनी बातें करते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। इसलिए आज के समय और पहले के समय में बहुत अंतर है।
1: पार्वती जी, आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो स्वभाव से काफी शर्मीली होती हैं, या जीवन भर सिर्फ घर गृहस्थी में ही व्यस्त रही हैं, इसलिए वे बाहर निकलकर नए दोस्त नहीं बना पाती हैं। ऐसी वरिष्ठ महिलाओं के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वे समाज से किस प्रकार जुड़ सकती हैं?
0: देखिए, बहुत सी औरतें बहुत शर्मीली होती हैं, जो समाज में घुल मिल नहीं पाती हैं। वो पहले से ही वो बहुत रोक टोक में रहती थी। आजकल का समय बहुत आगे बढ़ गया है, हर चीज सब इंटरनेट के माध्यम से होता है, जो पहले की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं आता था। वो हर जगह झुक जाती हैं, उनको शर्म आती है पूछने में। और आजकल के समय में जो बच्चे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, सब इंटरनेट का जमाना है, और इसलिए पहले और आज की महिलाओं में बहुत अंतर इसलिए हो गया है। तो महिलाओं को एक दूसरे के साथ जाके, जो उनसे बड़ी महिलाएं हैं और जो अच्छी हैं, समझदार हैं, शिक्षित महिलाएं हैं, उनके साथ बैठ के उनसे पूछना चाहिए। और बच्चों से भी पूछने में कोई शर्म नहीं है, इसलिए जब हम अपना कोई काम करते हैं, हमें नहीं आता है, सारे इंटरनेट के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, इसलिए हमको एक दूसरे से समझना भी पड़ेगा और समझौता भी करना पड़ेगा।
1: जी
0: देखिए, सामाजिक होना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम एक छोटे छोटे जैसे जो भी काम करेंगे तो हम एक दूसरे से मिल के करेंगे, पूछ के करेंगे। पहले के जमाने में तो अपन भी किसी के घर में कोई कार्य होता था तो सारी महिलाएं एक साथ बैठ के घर में अलग से अपनी कार्य करते थे। जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ पर दो चार औरतें मिलती हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, तो हमारा समाज इसलिए थोड़ी आगे बढ़ जाता है।
1: पार्वती जी, आज के दौर में तकनीक और स्मार्टफोन को बुजुर्गों को अलग थलग करने का जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल सामाजिक रूप से जुड़ने के लिए एक वरदान की तरह नहीं कर सकते? आपका इस बारे में क्या अनुभव है?
0: देखिए, ये जो मोबाइल है वो एक बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि हम उससे हर चीज की बातें उसमें देखते हैं और सुनते हैं, अपने एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, और सब कुछ हमको उससे मिलता है।
1: जी,
0: और इसमें कोई गलत भी नहीं है, इसको हम गलत भी नहीं समझेंगे। वैसे अच्छी चीज भी है ये, जो हमें एक दूसरे से कई चीजों से, सहेलियों से, बड़े बुजुर्गों से हमको ये मिलाता भी है। उनके हाल चाल भी हम पूछते हैं और उनको मैसेज भी भेजते हैं, जो भी है, इसलिए हम इसको कहीं पर अच्छा भी कहेंगे।
1: जी पार्वती जी, लोग अक्सर सोचते हैं कि रिटायरमेंट या 60-70 की उम्र के बाद इंसान का समाज में योगदान खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास जो अनुभवों का खजाना है उसकी समाज को आज सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: देखिए, जो हमारे पास जो भी तजुर्बा है वो किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आजकल का जो समय है, बच्चों की शादियां हो रही हैं, वो रिश्ते जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, और पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। और जो बच्चे आजकल इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। आजकल की लड़कियां, बहुएं, बेटियां, उनको समझना बहुत मुश्किल है। उनको ये पता नहीं है कि रिश्तों को कैसे बनाए रखना पड़ता है। ऐसे में हम जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, हम उनको अपने अनुभवों से उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये आजकल बहुत जरूरी है।
1: जी, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। पार्वती जी, जो माता पिता हैं वो किस प्रकार से अपने बच्चों को सामाजिकता के बारे में बताएं?
0: देखिए, हम ये अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि तुम एक सामाजिक भी बनो, अपना मोबाइल भी देखो, और अपने त्योहार भी पहचानो, अपने छोटे बड़ों को भी देखो, अपने दोस्तों के संग भी खेलो, ये हम अपने बच्चों को समझाना चाहेंगे।
1: और देखिए ना, पहले के बच्चे बाहर खेलते थे तो बहुत ही स्वस्थ रहते थे, और आज वही बच्चे इंटरनेट में गेम्स खेलते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है।
0: पहले के बच्चे खेलते भी थे और अपना खाना पीना भी वो बहुत ढंग से खाते थे
1: जी।
0: तो उस समय ये था कि ये आजकल के इतने फास्ट फूड नहीं होता था। आजकल के बच्चे मोबाइल में भी गेम भी खेलते हैं और उनका खान पान भी बहुत अलग है, इसलिए वो बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। आजकल के माँ बाप जो हैं दोनों जने जॉब वाले हैं और उनके जो बच्चे हैं वो घर में अकेले हैं, या तो उन बच्चों को वो हॉस्टल में डाल देते हैं या वो घर में, जिससे वो बच्चे उनका सहारा एक मोबाइल होता है। उनका मन जो करता है वो खाते हैं और जो करता है उनका न कोई निश्चित समय खेलने का भी नहीं है और कोई खाने का समय नहीं है, इसलिए वो ज्यादा अस्वस्थ रहते हैं।
1: और देखिए ना, अक्सर बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि आज के बच्चे संस्कारी नहीं रहे हैं। क्या वाकई में आज की जनरेशन संस्कारी नहीं है या हमारे सोचने का तरीका बहुत पुराना हो गया है?
0: देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आजकल के बच्चे संस्कारी नहीं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छी बातें हैं। कहीं पर बच्चे जैसे बड़ों को जगह नहीं मिलती है, गाड़ी में ही खड़े होते हैं तो बच्चे अपनी सीट छोड़ते हैं, और ये भी नहीं है कि बच्चे पाँव नहीं छूते हैं, बच्चे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं, कहते हैं आप बैठो, ये भी उनके संस्कारी हैं।
1: पार्वती जी, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: देखिए, मैं ये कहूँगी कि आजकल के बच्चे से जैसे हम पहले से रहते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे, ऐसे ही जुड़े रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए। मैं बस यही कहूँगी कि जिंदगी की ढलती शाम को तन्हाई का नाम न दो, अपने तजुर्बों से किसी और की जिंदगी को संवार दो। उठो, निकलो बाहर और मुस्कुराओ, गले लगाओ दुनिया को, तुम समाज का गौरव हो, खुद को यूं ही न बेकार करो। हमेशा याद रखिए, जब तक आप दूसरों के काम आ रहे हैं आप जिंदा हैं, सामाजिक बनिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए।
1: जी पार्वती जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से हम सामाजिक बने रह सकते हैं। आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक बने रहने की खूबसूरती विषय पर श्रीमती पार्वती भंडारी, वरिष्ठ महिला अल्मोड़ा से की गई बातचीत। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: लड़ाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का। बहनों कभी आपने ध्यान दिया है कि हर रोज सुबह जब हम तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी उन अनगिनत बोतलों को देखते हैं जिन पर लिखा होता है एंटी एजिंग क्रीम, किसी पर ग्लो सीरम, किसी पर स्किन ब्राइटनिंग लोशन। और बहनों आपको याद है बचपन की वो सुबह जब धूप आंगन में बिखरी होती थी और हमारी दादी माँ एक पीतल की कटोरी में कुछ घोल रही होती थी। उस कटोरी से जो खुशबू आती थी वो गुलाब जल की होती थी, वो चंदन की होती थी, वो शुद्ध शहद और ताजे दूध की मलाई की होती थी। बहनों क्या आपको याद है वो दौर जब चेहरे की रंगत निखारने के लिए हमें किसी मॉल या ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं होती थी। हमारी दादी नानी की रसोई ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे आलीशान ब्यूटी पार्लर हुआ करती थी। बहनों आज शुक्रवार है और आज हमारे कार्यक्रम का खास अंक होता है फैशन फ्राइडे। आज हम बात कर रहे हैं उन अनमोल खजानों की जो हमारी दादी नानी ने हमें दिए हैं, हमारी दादी की रसोई और खूबसूरती की पोटली के विषय में। मैंने जैसे हमारी पुरानी पीढ़ियों के त्वचा और बाल चमका करते थे ना, वैसे ही हमारे भी बाल और हमारी भी त्वचा चमक सकती है। मैंने आजकल बाज़ार में कई तरह की पील ऑफ मास्क आते हैं लेकिन महंगी पैकेट में बिकने वाले इन मास्क से कई गुना बेहतर मास्क हमारी दादी माँ मिनटों में तैयार कर देती थी, पता है ना आपको। जैसे बेसन, हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध और मलाई, जब इसे मिलाकर चेहरे पर लगाते थे तो त्वचा की कोमलता और चमक उभर कर आती थी। बेसन मृत त्वचा को हटाता है और हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करके कील मुहासों को रोकती थी और मलाई त्वचा को नमी देती है जिसकी तलाश में आज हम महंगे महंगे मॉइस्चराइजर खरीदते हैं। और सिर्फ चेहरा ही क्यों बहनों, बालों के लिए दादी माँ के पास जो नुस्खे थे उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आजकल हम हेयर स्पा के नाम पे बहुत से रुपए खर्च कर देते हैं, है ना, और दो दिन बाद बाल फिर से बेजान। लेकिन याद कीजिए दादी माँ के हाथ की वो तेल की मालिश, नारियल का तेल, सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा करी पत्ता, फिर उनसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ही मसाज, सारे सर का दर्द ही गायब हो जाता था, है ना बहनों, याद है आपको। बहनों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और तनाव की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या हम महिलाओं को झेलनी पड़ती है वो है चेहरे पर काले धब्बे, झाइयाँ, आँखों के नीचे काले घेरे। जब ये चीज़ें चेहरे पर आती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन आप जानती हैं कि इन समस्याओं का इलाज आपकी रसोई के एक छोटे से कोने में छिपा है जो हमारी दादी माँ के बहुत कारगर नुस्खे हैं। मैंने झाइयों और दाग धब्बों के लिए आलू का रस, नींबू का रस लगा सकती हैं। काले घेरों के लिए खीरा और ठंडी मलाई से आँखों के आसपास हल्के हाथों से मालिश कर लीजिए। रुखी होठों के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ और मक्खन, है ना। और टैनिंग के लिए आधा टमाटर, उस पर पीसी चीनी या कॉफ़ी पाउडर डालकर चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़िए। मैंने खूबसूरती के लिए समय नहीं बस थोड़ी सी चाहत की ज़रूरत होती है। मैंने दादी नानी के ये नुस्खे सिर्फ नुस्खे नहीं, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है जिन्होंने पीढ़ियों से संजो कर रखा है। हमें पता है इस वक्त हमारी बहुत सी बहनें रेडियो सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही होंगी और सोच रही होंगी कि हाँ, मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी, है ना बहनों? बहनों, हम तो चाहते हैं आप हमारी सभी बहनें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और फिलहाल तो इस समय ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

मैनू इसी गीत के साथ समय हो गया है कार्यक्रम के समापन का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो बहनों हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी रेडियो सखी प्रीति जाटव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के 1:05 का समय, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रोपाई की। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। और बागेश्वर नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। फड़ व फेरी व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। श्री चौहान ने इस दौरान राज्य में नर्सरी को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई कर कृषि कार्यों में भागीदारी की। इससे पहले श्री चौहान ने पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक विचार है। ये विचार ज्ञान को समाज की सेवा, विज्ञान को मानवता के कल्याण और कृषि को राष्ट्र निर्माण का आधार मानता है। उन्होंने आधुनिक कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए विश्वविद्यालय की भी सराहना की।
2: आप एक उन्नत डेटा सेंटर बनाने वाले, मैं आपको बधाई देता हूँ। बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे ना, जहाँ मिले वहां से ले लो। आप एक एआई पर भी उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी गजब की चीज है। कई बार लगता है दुनिया बदल भी जाएगी, कई बार थोड़ी चिंता भी होती कि गड़बड़ नहीं हो जाए, इंसान का महत्व ही खत्म हो जाए, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। मित्र, पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार है। ये विचार है जो कहता है कि ज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री आज कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भी भाग लेंगे। एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आज के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला के मैदान में हुई शहादत को याद किया जाता है। प्रदेश की राजधानी देहरादून समेत रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार समेत अन्य जगहों पर मस्जिदों में विशेष धार्मिक

0: धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उलेमा करबला की कुर्बानी और इंसानियत के संदेश को प्रसारित कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बागेश्वर नगर पालिका परिषद में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फड़ व फेरी व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया। साथ ही लोगों से विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई। वहीं सिटी मिशन मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने फड़ व्यवसायियों से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचे।
2: आज हमारे यहाँ पे नगर पालिका सभागार में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें हमने सभी बैंकर्स को बुलाया है और जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं पीएम स्वनिधि में उन बैंकर्स को और लीड बैंक अधिकारी जी को और फड़ व्यवसायियों को और सभी निकायों के समस्त अधिशासी अधिकारियों को भी बुलाया आमंत्रित किया है और साथ में हमने बच्चों का भी ड्राइंग कंपटीशन रखा था जो कि उसमें हमने उनको थीम दी थी स्वच्छता पे कि किस तरह से वो स्वच्छ वातावरण रख सकते हैं और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो इसमें हमने बच्चों को भी पुरस्कृत किया है और हम बैंकर्स को भी पुरस्कृत करेंगे और जो फल व्यवसायियों ने समय पर लोन वापस कर दिया है उनको भी इसमें पुरस्कृत करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1872 परिवारों का आशियाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना में 1872 आवासों को बनाया गया है। 832 फ्लैट तैयार हो चुके हैं। 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं। ये फ्लैट 6 लाख रुपए लागत से बने हैं, लेकिन पात्र परिवारों को इन्हें केवल 3 लाख रुपए ही देने होंगे। बाकी रुपए केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है, जिसमें कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा है। सभी फ्लैट भूकंपरोधी तकनीक से बनाए गए हैं। बागवाला कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था है। बच्चों के लिए हरे भरे पार्क भी हैं। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि परियोजना के तहत लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है और जल्द ही आवासों की चाबी उन्हें सौंप दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। खेत बचाओ अभियान में किसानों के साथ धान की रुपाई की। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोली। और बागेश्वर नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। फड़ व फेरी व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों के साथ। कैफी आजमी की ये गजल है।

भूपिंदर सिंह मिताली सिंह की गाई सी गजल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1315।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही

0: कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you.
4: How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you.
6: Congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
3: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come. John, please come here.
4: Oh, sure.
5: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: हाँ।

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,

0: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार?
8: हाँ जी बाजी, हम तैयार
6: हैं। वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
9: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ।
9: हाँ?

0: सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
1: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
2: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
2: अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी।

0: क्या कहलाता हूँ?
1: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
2: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
2: अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
2: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
3: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
4: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही एकदम सही।
3: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
2: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
2: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
2: हाँ।
4: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
2: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है,
0: है ना?
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
2: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ओह ऐसी वाली सर्दी ना।
2: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ। चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
2: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70।

0: हंड्रेड हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ, कलाकार हैं काशीनाथ शर्मा।

0: जॉनसन गबन के गए से कुमाऊनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

0: भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है दुग्ध ज्वर दुधारू पशुओं के प्रमुख समस्या। दुधारू पशुओं में प्रमुख समस्या, जानकारी दे रही हैं डॉक्टर कंचन आर्या।
3: पशुपालकों, डेयरी फार्मिंग वैश्विक कृषि बाजार के सबसे आवश्यक क्षेत्रों में से एक है और दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य वैश्विक महत्व का मुद्दा है। ब्याने के तुरंत पहले, ब्याने के दौरान और ब्याने के बाद होने वाली बीमारियां पशुओं के प्रजनन चक्र पर संभावित रूप से विनाशकारी प्रभाव डालती है और इन स्थितियों की समझ पशु उत्पादन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशुपालकों के लिए प्रसव पूर्व अवधि के दौरान दुधारू गायों के स्वास्थ्य को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। दुधारू पशुओं में ब्याने के बाद का समय महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अधिकांशतः चयापची संबंधी रोग बछड़े के जन्म के 2 सप्ताह के भीतर होते हैं। कुछ संक्रामक रोग और बाँझपन अक्सर इसी अवधि के दौरान चयापची संबंधी रोगों से जुड़े हो सकते हैं। आमतौर पर यह रोग ऊर्जा चयापचय, खनिज चयापचय तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के असंतुलन को दर्शाती है। डेयरी फार्म का कुप्रबंधन आगे चलकर चयापची संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस समय उच्च दूध उत्पादक गायों में प्रतिरक्षा दमन का सबसे महत्वपूर्ण कारण चयापची संबंधी तनाव है, जो हार्मोनल तथा चयापची संबंधी उतार चढ़ाव, नकारात्मक ऊर्जा संतुलन, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी के कारण होता है, जो भ्रूण की मांग को पूरा करने के साथ साथ दूध उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। दूध गुजर मिल्क फीवर एक गंभीर चयापची समस्या है, जो आमतौर पर ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद होता है। सामान्यतः यह रोग गायों में 5 से 10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। आमतौर पर यह रोग गाय और भैंसों में 3रे से 7वें ब्यात में अधिक होता है। दूध गुजर के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान काफी अधिक हैं। इनमें मृत्यु, समय से पहले पशु का अनुत्पादक हो जाना, उपचार लागत और भविष्य के ब्यात में दूध उत्पादन में कमी होने वाले नुकसान शामिल हैं। दुधारू पशुओं के लिए कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन आहार में अति महत्वपूर्ण है। पशु के शरीर में ब्याने के तुरंत बाद या कुछ दिन पहले ऊतकों में कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में ब्याने के बाद खीस में अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है, परिणाम स्वरूप दूध गुजर मिल्क फीवर हो जाता है। लेकिन इस रोग में पशु का शारीरिक तापमान बढ़ने के बजाय सामान्य से भी कम हो जाता है। दूध गुजर का मुख्य कारण खून में कैल्शियम की कमी होना है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल व दूध में अधिक मात्रा में कैल्शियम का स्राव होना, गर्भावधि के समय संपूर्ण आहार ना मिलना, कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस सही नहीं होना, विटामिन डी की कमी होना, पशु के गर्भकाल के अंतिम समय में महत्वपूर्ण मिनरल कम मिलना, शुष्क अवधि जब पशु दूध नहीं देता, इसके दौरान कैल्शियम की मांग अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए इस समय के दौरान कैल्शियम का आंतों में अवशोषण और हड्डियों में अवशोषण अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। जब कैल्शियम होमियोस्टैटिक तंत्र दूध उत्पादन के लिए कैल्शियम की मांग को पूरा करने में असमर्थ होता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान कैल्शियम खिलाना पशुपालकों द्वारा की जाने वाली कुप्रबंधन में से एक है, जो कि दूध गुजर का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि गाय को गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान उच्च कैल्शियम वाला आहार दिया जाता है तो उसका शरीर कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। यदि कैल्शियम गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान बाहरी रूप से दिया जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड शांत अवस्था में चली जाती है, जो कैल्शियम का स्तर खून में सामान्य बनाए रखती है और बाहरी कैल्शियम बंद होने पर कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होती, परिणाम स्वरूप दूध गुजर के लक्षण दिखने लगते हैं। दूध गुजर की प्रथम अवस्था में पशु अधिक संवेदनशील और उत्तेजित हो जाते हैं। पशु खाना पीना बंद कर देते हैं और जीभ बाहर निकाल कर बैठते हैं। उनका शरीर शारीरिक तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है। पिछले पैरों एवं शरीर में अकड़न होने लगती है। इस रोग के लक्षण ब्याने के 1 से 3 दिन तक प्रकट होते हैं। दूध गुजर रोग की दूसरी अवस्था में पशुओं को उठने एवं खड़े होने में कठिनाई होती है, इसलिए ज्यादातर पशु अपने गर्दन को मोड़ कर बैठे रहते हैं, जो इस अवस्था का मुख्य लक्षण है। पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम होने लगता है और पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। आमाशय की गति धीमी होने से कब्ज की समस्या होती है। मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। हृदय की ध्वनि धीमी हो जाती है और हृदय गति बढ़कर प्रति मिनट 60 तक हो जाती है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत भी होती है। दुग्ध ज्वर की तीसरी अवस्था में पशु बेहोश

0: बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं। शारीरिक तापमान कम होने से पशुओं के पैरों एवं शरीर ठंडे हो जाते हैं। पशुओं की हृदय गति बढ़कर प्रति मिनट 120 तक हो जाती है और हृदय की ध्वनि सुनाई नहीं देती। मांसपेशियों में लकवा हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण अफारा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग में उपचार जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। यदि समय पर उपचार नहीं हो तो दूध उत्पादन घट जाता है तथा पशु की मृत्यु 12 से 24 घंटे में हो सकती है। पशु चिकित्सक की सलाह पर पशु की नस में धीमी गति से कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ाने से तुरंत आराम मिलता है। ध्यान रखना चाहिए कि यह दवा पशु को धीरे धीरे चढ़ाई जाए। रोग की शुरुआती अवस्था में कैल्शियम देने से पशु जल्दी ठीक हो जाता है। उपचार के दौरान यदि पशु लेटा हुआ है तो उसे सहारा देकर बिठाना चाहिए तथा पशु के नीचे भूसा और बोरी का सहारा रखना चाहिए। दुग्ध ज्वर में सावधानियां और बचाव के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के एक महीने पहले से खनिज लवण, दाना मिश्रण तथा संतुलित पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु के ब्याने के बाद थनों से पूरा खीस नहीं निकालना चाहिए। सर्दी के मौसम में चारे में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए पशु के दाने में खनिज मिश्रण अवश्य मिलाएं, जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो सके। दुधारू पशुओं को ब्याने से 2 महीने पहले दूध निकालना छोड़ देना चाहिए। ब्याने के बाद 3 दिन तक पूरा खीस ना निकालें। अधिक दूध देने वाली संकर गायों में यह समस्या ज्यादा रहती है, तो इनमें अधिक सावधानी से खिलाई पिलाई करानी चाहिए। विटामिन डी की पूर्ति हेतु पशु को मौसम का ध्यान रखते हुए कुछ समय धूप में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य खनिज जैसे मैग्नीशियम तथा फास्फोरस भी इस रोग के रोकथाम तथा इलाज में महत्व मददगार साबित हो सकते हैं। उपचार के बाद ठीक हो जाने वाली गायों में 24 घंटे तक दूध नहीं निकाला जाना चाहिए। ब्याने के बाद दुधारू पशुओं के प्रारंभिक दूध उत्पादन के समय सही मात्रा में कैल्शियम का पोषण कराना चाहिए, जिससे कि दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर से बचाया जा सके। दुग्ध ज्वर को रोकने के लिए पोषण संबंधी दृष्टिकोण आहार में विशिष्ट तत्वों को शामिल करना है। गाभिन पशुओं को गर्भ के अंतिम तिहाई में डेयरी फीड में प्रतिदिन उचित मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए। यह उनके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा तथा दुग्ध ज्वर के खतरे को भी कम करेगा। ब्याने से 2 से 8 दिन पहले इंजेक्शन द्वारा दिया गया विटामिन D3 दुग्ध ज्वर को रोकने में उपयोगी हो सकता है। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार प्रदान करें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। मिनरल मिक्सचर ब्याने से 1 माह पूर्व आहार में देना शुरू कर दें। यह उनके शरीर के लिए आवश्यक होता है ताकि वे स्वस्थ रहें और कैल्शियम का संतुलन बनाए रखें। साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों की कमी की भरपाई को भी पूरी कर सके। ब्याने के तुरंत पहले, ब्याने के दौरान और ब्याने के बाद के समय को ध्यान से निगरानी करें और किसी भी संकेत को तुरंत पशु चिकित्सक को सूचित करें। यदि दुग्ध ज्वर के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो तुरंत उपचार शुरू करें। ब्याने के बाद दूध कम निकालें। प्रति गाय को प्रतिदिन अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे यौगिकों के संयोजन की 150 से 250 ग्राम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि पहले ब्यात वाले पशुओं को कैल्शियम की जरूरत नहीं होती। बढ़ती ब्यात के साथ पशुओं को कैल्शियम दें। गायों के गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद नियमित रूप से कैल्शियम पशु चिकित्सक की सलाह से पाउडर के रूप में ही पशु को दें। गर्भावस्था के दौरान कभी भी कैल्शियम का इंजेक्शन ना लगाएं। दूध ना देने वाली गायों को शुष्क अवधि के दौरान उचित रूप से प्रबंधित किया जा सके ताकि ब्याने के बाद बेहतर दूध उत्पादन सुनिश्चित हो सके। सुनिश्चित करें कि शुष्क अवधि में कैल्शियम गाय कैल्शियम जुटा रही है ताकि जब वह दूध उत्पादन कर रहे तो कैल्शियम की कमी से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम हो। इस अवधि में गाय को कम कैल्शियम वाला आहार दें ताकि उसका शरीर आंत और हड्डियों से कैल्शियम का संतुलन बनाए रखे। अंत में मैं पशुपालकों से कहना चाहूंगी कि दुधारू पशुओं की गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल करें। प्रसव पूर्व अवधि में अत्यधिक दूध उत्पादन करने वाली डेयरी गायों में चयापचय संबंधी विकार, प्रतिरक्षा संबंधी विकार और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं होने का जोखिम काफी अधिक होता है। डेयरी गायों में चयापचय संबंधी विकारों के संबंध में विशिष्ट रोकथाम और निगरानी आवश्यक है। चयापचय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए उचित रूप से संतुलित आहार दिया जाना चाहिए।
1: दुग्ध ज्वर दुधारू पशुओं में प्रमुख समस्या, इस विषय पर डॉक्टर कंचन आर्या से खेती की बातें कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार संध्या 7:30 पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अच्छे श्रोता बने और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। सिने जगत से के तहत जानिएगा नितिन मुकेश के बारे में और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे लक्ष्मी प्रसाद और साथी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, छत्रपति साहू जी महाराज जयंती, मुहर्रम और योग पर चर्चा प्रसारित होगी। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा, आज सुनिएगा लता मंगेशकर और चंद्र आत्मा के गाए भजन। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती विषय पर। इसके अलावा खेती बचाओ जैविक खेती के फायदे, इस विषय पर क्षेत्र संकलित जानकारी सुनवाई जाएगी। आज रात 8:00 नशामुक्त भारत अभियान, नशे की जद में युवा कैसे करें पहचान व नशा मुक्ति का समाधान, इस विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दूर्वा पंत से भेंट वार्ता प्रसारित होगी। भेंट करता होंगे संजय जोशी। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, रात 10:30 पर और श्रोता अपने फरमाइश के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपके अनुरोध पर प्रोग्राम के तहत रात 9:30 पर। सुगम संगीत सबरस में हम लेकर आएंगे रात 8:20 पर, रात 10:00 भी सुगम संगीत श्रोता सुनेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार हैं मशहूर अभिनेता चमनपुरी। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे तमाम अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया, तो चरित्र अभिनेता के तौर पर भी वो नजर आए और अपने एक्टिंग से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अलग छाप छोड़ी है। ऐसे ही एक विलन के किरदार को हम याद करें तो अमरीश पुरी याद आते हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से अपने किरदारों को जीवंत किया। और आपको ये भी बता दें कि हिंदी सिनेमा में अमरीश पुरी, चमनपुरी और मदनपुरी, ये तीनों भाई के तौर पर जाने जाते हैं, और इन भाइयों की जोड़ी कई फिल्मों में इन लोगों ने अभिनय किया है। आज अमरीश पुरी और मदनपुरी के भाई चमनपुरी का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में कई किरदार निभाए, खास तौर पर चरित्र अभिनेता के तौर पर वो नजर आए हैं। आज एक ही फनकार के फनकार चमनपुरी हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हुए श्रोताओं उनकी अभिनीत फिल्मों के चंद नगमे हम पेश कर रहे हैं। ये भले ही उन पर फिल्माए गए नहीं हैं, लेकिन उन्हीं की फिल्मों से हैं।

तो शुद्ध हिंदी और पंजाबी सिनेमा के जाने माने चरित्र अभिनेता थे चमन पुरी, मदन पुरी और अमरीश पुरी के ये सबसे बड़े भाई थे। लगभग 5 दशकों से ज़्यादा के अपने फिल्मी करियर में 80 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। और शुरुआती दौर की बात करें तो चमन पुरी ने अपने चचेरे भाई, उस दौर के मशहूर अभिनेता और गायक के एल सहगल के कहने पर 1938 में फिल्म स्ट्रीट सिंगर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।

तो श्रोताओं, साल 1938 में फिल्म स्ट्रीट सिंगर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की चमनपुरी जी ने, और उन्हें अक्सर चरित्र भूमिकाओं में देखा गया। कभी वो नायिका के पिता, कभी पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या अन्य चरित्र भूमिकाओं में उन्होंने अभिनय किया। उनकी यूं तो फिल्मों की

एक लंबी फहरिस्त हैं जिनमें हावड़ा ब्रिज, द ट्रेन, विक्टोरिया नंबर 203 और मासूम जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा रात की रानी, संग्राम में पुलिस अधिकारी की भूमिका में वो नजर आए, तो नादान, बहार, अफसाना, आंसू, शरत, इन फिल्मों में डॉक्टर की भूमिका उन्होंने निभाई। और उनकी फिल्मों में हम भी इंसान हैं, कमांडर, पतंग, मासूम, स्कूल हेडमास्टर के रूप में वो इनमें नज़र आए, तन्हाई, सपने सुहाने, हम्मत वाले नौजवान, राज की बात, फूल बने अंगारे, दीपक, लीडर, शहीद, तीन चोर, चोर मचाए शोर, इंसान और शैतान, गीत, संसार जैसे कई फिल्मों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तो श्रोताओं, चमनपुरी एक सुविख्यात अभिनेता तो थे ही, साथ ही साथ वो बेहद खुले दिल के और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। लोग उनके साथ समय बिताना बेहद पसंद करते थे और उनकी कहानी और हास्य का खूब आनंद लिया करते थे। 26 जून 1998 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। दुनिया भर में उनके प्रशंसक उन्हें हमेशा उनकी फिल्मों के जरिए याद करेंगे।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म निर्माण और निर्देशन की जब भी बात हो, जब भी इनका जिक्र हो, तो एक स्तंभ के तौर पर हम याद करते हैं धर्मा प्रोडक्शन को और उसके संस्थापक यश जौहर जी को। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हुए उन्हीं की फिल्मों से सजे चंद नगमे पेश कर रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत में।

तो श्रोताओं, यश जौहर जी का जन्म अमृतसर में 6 सितंबर 1929 को हुआ। उनकी परवरिश शिमला में हुई और कुछ समय के लिए लाहौर और फिर दिल्ली में उनकी परवरिश हुई। यश जौहर जी का मुंबई आना सिर्फ और सिर्फ उनकी दादी की बदौलत मुमकिन हो पाया। कहते हैं ना, किसी की भी सफलता में हाथ एक औरत का होता है, तो यहाँ उनकी दादी ने ही उन्हें यश दिलवाया। उनकी दादी हमेशा उनसे कहा करती थी कि तू यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए जन्मा है, और उन्होंने ही अपने पोते को घर से भगाकर मुंबई जाने की सलाह दी। जी हाँ, दादी ने अपने कुछ गहने और कैश देकर पोते को घर से रवाना किया मुंबई के लिए, और इस तरह यश जौहर का पदार्पण हुआ मुंबई में।

मुंबई आकर यश जौहर जी की ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष आया, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान भी न था। और एक तस्वीर ने उनकी तकदीर बदल दी। हुआ यूं कि जब वो मुंबई पहुँचे तो उन्हें एक जाने माने अखबार कंपनी में एक फोटोग्राफर बनने की उनकी इच्छा थी, और बात बन नहीं पा रही थी। और वो एक अच्छे फोटोग्राफर थे। ये वो दौर था जब मधुबाला जी, जानी मानी अभिनेत्री, किसी को भी अपनी तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन कहते हैं वो किसी फिल्म को शूट कर रही थी, तो और वहीं यश जौहर जी ने अपनी फर्राटेदार अंग्रेज़ी से और अपने अच्छे स्वभाव से मधुबाला जी का दिल जीत लिया, और उन्होंने खुश होकर उन्हें अपनी तस्वीर खींचने की इजाज़त दे दी। और यश जौहर जी वही तस्वीर लेकर उस जाने माने अखबार के ऑफिस में पहुंचे, तो वहां उन्हें तुरंत नौकरी मिल गई। तो श्रोताओं, ये कहते हैं कि एक्ट्रेस यानी मधुबाला जी को यश जौहर का स्वभाव बहुत पसंद भी आया। उन्होंने ना केवल फोटोशूट करवाया बल्कि अपनी कंपनी में उन्हें काम भी दिलवाया। इस तरह यश जौहर प्रोडक्शन हाउस में बतौर कर्मचारी जुड़ गए, और फिर उन्होंने आगे अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। शशधर मुखर्जी से लेकर सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस में भी बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर उन्होंने काम किया।

1960 के दशक में आते आते यश जौहर को अगली नौकरी मिली देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म में। यहाँ उन्होंने लगभग 12 साल तक नौकरी की और उनके संबंध जाने माने अभिनेता देवानंद के साथ बेहद अच्छे रहे और साथ ही साथ वो इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स से मिलते जुलते रहे। पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानने लगी और उनके स्वभाव के चलते उन्हें पसंद भी करने लगी। साल 1976 में यश जौहर जी ने अपने करियर में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी की, नाम रखा धर्मा प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन के तहत उन्होंने पहली फिल्म का जो निर्माण किया वो थी दोस्ताना, जो कि साल 1980 में ये फिल्म आई। और अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, हेलन, अमरीश पुरी, प्राण जैसे दिग्गज कलाकार इस फिल्म में उन्होंने काम किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। जावेद अख्तर और सलीम खान ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और ये फिल्म जो है उस दौर में मील का पत्थर साबित हुई यश जौहर जी के लिए।

दोस्ताना फिल्म सुपरहिट रही तो यूं लगा जैसे यश जौहर जी की किस्मत चमक गई। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। दुनिया, मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट जैसी कई फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक ये प्रदर्शन नहीं कर सकी। लगातार असफलताओं ने धर्मा प्रोडक्शंस की आर्थिक स्थिति को गंभीर कर दिया। हालांकि हालात बहुत ख़राब थे, पर यश जौहर जी को इस दौर में अपनी कुछ संपत्तियां बेचनी तक पड़ी। परिवार को भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। हालांकि यश जौहर ने हार कभी नहीं मानी। उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के कारोबार में भी हाथ आजमाया और वो आगे बढ़ते रहे।

तो श्रोताओं, जब यश जौहर संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तभी उनका बेटा करण जौहर फिल्मी दुनिया को करीब से समझ रहा था। करण की फिल्मों में गहरी रुचि थी। उन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और साल 1998 में करण जौहर ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है, इस फिल्म का उन्होंने निर्माण किया। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म ने ना केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि धर्मा प्रोडक्शंस को भी नई जिंदगी दे दी।

तो श्रोताओं, कुछ कुछ होता है फिल्म ने जहां रिकॉर्ड रच दिया, वहीं 2001 में करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म का निर्माण किया, वहीं 2003 में कल हो ना हो जैसी लगातार तीन बड़ी सफलताओं ने धर्मा प्रोडक्शंस को बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनरों में शामिल कर दिया। जिस सफलता का इंतज़ार यश जौहर वर्षों से कर रहे थे, आखिरकार उनके बेटे ने कर दिखाया वो कमाल जो धर्मा प्रोडक्शंस की सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले गया। और बात करें यश चोपड़ा की, तो यश चोपड़ा जो हैं उनकी बहन हीरू यश जौहर की पत्नी हैं, उनका विवाह उनसे हुआ था, और रिश्ते में करण जौहर के मामा यश चोपड़ा हैं। और फिल्मों की बात करें तो ये जो तीन फिल्में आई, यूँ तो कई फिल्मों का उन्होंने बाद में निर्माण किया, लेकिन शुरुआती दौर की कल होना हो, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया यश जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को।

यश जौहर की फिल्मों का जिक्र करें तो साल 1980 में दोस्ताना, 1984 में दुनिया, मुकद्दर का फैसला, 1987 में अग्निपथ, 1990, 1993 में गुमराह, 1998 में डुप्लीकेट, 1998 में ही कुछ कुछ होता है, 2001 में कभी खुशी कभी गम, 2003 में कल हो ना हो जैसे फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया। 1980 में अपना बैनर धर्मा प्रोडक्शन उन्होंने लॉन्च किया, जिसके तहत जो शुरुआती फिल्म थी दोस्ताना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और 1984 में उन्होंने दिलीप कुमार साहब को लेकर फिल्म बनाई दुनिया।

श्रोताओं, जब धर्मा प्रोडक्शन ऊंचाइयों को छू रहा था, तभी यश जौहर की जिंदगी में एक बड़ी चुनौती आ गई। उन्हें कैंसर हो गया और उनका इलाज चलता रहा। 26 जून 2004 को यश जौहर इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। हालांकि यश जौहर के बेटे करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस को बॉलीवुड का नंबर वन प्रोडक्शन हाउस बनाया है। अपने पिता की विरासत को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला है और यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शंस को आज सबसे बेहतरीन प्रोडक्शंस हाउस में गिना जाता है। और आज हम उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं और आगे भी अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने व्यक्तित्व के ज़रिए यश जौहर जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्में गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60%

0: शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे सभी कार्यक्रम FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के बागेश्वर केंद्र से और मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र से भी रिले किए जा रहे हैं। कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैल स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद और साथियों से कुमाऊनी लोकगीत।

लक्ष्मी प्रसाद और साथियों के गए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 6:50 पर और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। आज रात 8 हम आपको सुनवाएंगे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की जद में युवा कैसे करे पहचान व नशा मुक्ति का समाधान विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दुर्वा पंत से भेंटवार्ता। आपके साथ भेंट करता होंगे संजय जोशी। समय याद रखिएगा आज रात 8:00। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी अच्छे श्रोता बने विषय पर और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर। उत्तरायण कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चाएं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग विषय पर, मुहर्रम पर छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर और योगा फॉर मोबिलिटी एंड बैलेंस विषय पर। भक्ति संगीत का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। आज शाम 7 आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता जैविक खेती के फायदे विषय पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:40 पर। सबरस कार्यक्रम होगा 8:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुनेंगे 9:15 पर। आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 9:30 पर। सुगम संगीत सुनिएगा 10:00 और फिल्म संगीत हम आपको पुनः सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। यदि रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर। विचार बिंदु 6:05 पर, जिसके बाद 6:10 पर आराधना

अंतर्गत कुछ भक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। आज की बात आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 पर सुनिएगा देश गान। विविधा कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा 7:10। 7:30 पर सुनिएगा लोकमंजरी कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। अपने फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे गीत निर्झर कार्यक्रम में 9:05 पर। 10:05 पर सुनेगा कार्यक्रम सबरंग। सुरबहार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 10:35 पर। सैनिकों के लिए फौजी भाई फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम सुनते हैं 11:00। 11:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद हम आपके लिए लेकर आएंगे 12:00। अर्पण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा सुसज्जित घर प्रफुल्लित मन। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा 1:15 पर। कल दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे नाटक जंगली बूटी। लेखिका होंगी अमृता प्रीतम। उत्तराखंड के लोकगीत सुनेगा 2:00। खेती की बातें कार्यक्रम में 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे संजय कुमार की वार्ता। विषय रहेगा आधुनिक कृषि में माइक्रो बायोलॉजी का योगदान। फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा 2:45 पर और सदाबहार फिल्म गीत सुनेगा 3:00। कल की सायंकालीन सभा में रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हेमंत सिंह लोधियाल का गाया कुमाऊनी लोकगीत सुनिएगा शैल स्वर कार्यक्रम में 5:05 पर। 5:15 का समय रहता है युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी का। कल इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी बॉडी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा हेलेन किलर जयंती पर अल्मोड़ा में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। उत्तरायण कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चाएं लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमिता दिवस विषय पर, महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि पर, हेलर किलर जयंती पर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू डेली योगा विषय पर। भक्ति संगीत का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। कल शाम 7:00 कार्यक्रम होगा किसान वाणी। कल इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी कृषि में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय रहेगा खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा परीक्षण विषय पर। आज की सलाह सुनिएगा पीएम कृषि सिंचाई योजना विषय पर। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रमा तिवारी से भेंट वार्ता, सरकार के 12 वर्ष समेकित कृषि एवं सब्जी उत्पादन विषय पर। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:40 पर। कल रात्रि 8:00 आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ क्रम में अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे के प्रभारी श्री रितेश सैनी से भेंट वार्ता। समय याद रखिएगा कल रात 8:00। सबरस कार्यक्रम होगा 8:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज के आधे घंटे के सफर में एक बार फिर हम आपके साथ हैं।

तो इस सफर को यूजफुल और एंटरटेनिंग बनाएंगे कुछ जानकारियों और खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, आप हमारे श्रोता हैं, है ना? और जब आप हैं तब हमारा आकाशवाणी है और हमारे कार्यक्रम है। तो चलिए आज बात आप ही से करें, यानी कि आज की बात हम कर रहे हैं कि अपने सामान्य जीवन में हम अच्छे श्रोता कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा श्रोता बनना प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। ये केवल शब्दों को सुनना नहीं बल्कि वक्ता के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझना भी है। बेहतरीन श्रोता बनने के लिए फोकस देना, धैर्य रखना और बिना पूर्वाग्रह के सुनना आवश्यक है। कुछ लिसनिंग स्किल्स हैं दोस्तों, जिनसे कि हम अपने व्यवहार को, अपने कौशल को निखार सकते हैं। जैसे कि जब कोई हमारे सामने बोल रहा है तो हम उस पर पूरा ध्यान दें, यानी कि उससे आँख से आँख मिलाकर बात करें, जिससे उसको ये महसूस हो कि हम उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी तरह से जब कोई वक्ता हमसे बोल रहा है तो एक अच्छे श्रोता के रूप में हम उसकी बातों को सुनें, ना कि बीच में इंटरप्ट करें। हमारे शारीरिक हाव भाव दोस्तों ऐसे होने चाहिए कि जो हमारा वक्ता है, जो हमारे सामने अपनी बात बोल रहा है, उसको ये लगे कि हम उसकी बातों को सकारात्मक रूप से सुन रहे हैं। यानी कि बीच में हम जी बोलें या हम बोलें या हम करके हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से भावनात्मक रूप से उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो हम उसकी बात को रिपीट करके उससे बात कर सकते हैं, और अगर कुछ ज़रूरी आपको लगे तो कुछ प्रासंगिक प्रश्नों को भी उससे पूछा जा सकता है। और दोस्तों, यही कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जो हमें समाज में कुछ अलग हटकर बना देती हैं। तो इन सामान्य बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए और फिर देखिए कि आप सबके बीच में कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं

0: दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, तो चलिए इस बारे में कुछ बात करें। नशीली चीजों और पदार्थों के निवारण के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में 7 दिसंबर 1987 से इसे मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य दोस्तों लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना है। तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत इस अंतराल के बाद।
1: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें, बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।

युववाणी कार्यक्रम में दोस्तों अब बात करेंगे सिने जगत से क्रम में। हिंदी फिल्मों के एक दिग्गज और सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 जून को सन 1950 में हुआ था। दोस्तों ये वो गायक हैं जो कि महान गायक मुकेश के बेटे और अभिनेता नील नितिन मुकेश के पिता हैं। उन्होंने 70 और 80 के दशक में कई रोमांटिक और भावुक गीत गाए। इनके जीवन और करियर के बारे में अगर हम प्रकाश डालें तो इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो इनका जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था। इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रसिद्ध गायक

लता मंगेशकर ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनके साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगीत टूर्स पर वो गईं, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली। इसके बाद तो दोस्तों 1980 और 90 के दशक में उन्होंने लगातार खयाम, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, बप्पी लाहिड़ी और राजेश रोशन जैसे दिग्गज संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। अगर हम इनके लोकप्रिय गानों की बात करें तो इनके मशहूर गानों में चांदनी फिल्म का तू मुझे सुना, मेरी जंग का जिंदगी हर कदम एक नई जंग, तेजाब का सो गया जहां और माय नेम इज लखन, राम लखन फिल्म से हैं। फिल्मों के अलावा इन्होंने कई प्रसिद्ध गीत और भजन भी गाए हैं। तो दोस्तों ये तो एक जानकारी थी प्रसिद्ध पार्श्व गायक नितिन मुकेश जी के बारे में। और जब जिक्र छिड़ा है तो चलिए इनका एक प्रसिद्ध गाना भी सुन लिया जाए।

और अब दोस्तों कार्यक्रम में समय हो चला है प्रश्न उत्तर का। हमारे कार्यक्रम में कल पूछा गया प्रश्न था, कोरियाई युद्ध कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 जून 1950 को। और अब इसी क्रम में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। और अब चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के लता कपूरक नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं को सपनक हमार उत्तरायण कार्यक्रम में। और श्रोताओं आज कार्यक्रम की शुरुआत करूँ एक गीत दगड़।

श्रोता कार्यक्रम में अल्लापुर अनिल कुमार भारती गाई हुई योग्य सुनो। श्रोता आज 26 जून छू और आज विश्व नशा निषेध दिवस मनाई जान लग रो। श्रोता आप सब उन देखल कि नशा यस बीमारी छू, एक प्रकार बीमारी जस छू, जो कि अगर एक बार कोई ले मनखी के यो लग जा तो फिर वीक जीवन जो छू बिल्कुल बर्बाद है जा। और वह बे जुड़ी हुई जो लेविक पारिवारिक सदस्य हनी, जो वह बे जुड़ी रही जुड़ी छन, उले बहुत ज़्यादा परेशान है जा और जीवन ले नरक का बराबर है जा। तो हम देखनू कि नशल आजकल हर जाग पर अपन जो पैर छू पसा गई और कतु कतु मन की नशक गिरफ्त में आ गई। और आजकल अगर अपुल्ले देखना लिख के उठ के जो युवा छन वो नशक सेवन करने लग रही, नशा करने लग रही। और वी के दगर दगर जो स्कूली नानतीन हनी

0: उन्हों में लगे एक प्रभाव देखन हूँ मिलन नगर। तो श्रोताओं अगर हमारे जो युवा छन और किशोर छन अगर वो नशक ग्रस्त में जला तो अखिन के हमारे जो देशक भविष्य छू वो बिल्कुल खराब है सको किले की आजक युवा भोग हमारे देशक भविष्य होल। तो अगर देशक भविष्य जो छू नशक ग्रस्त में जल तो हमारे देशक के हाल है सको ये हम सब जानू। तो यह लीजिए हम सब उनके अपना अपन जो नानतीन छन उन पर ध्यान देने चाहें और ये देखना चाहिए कि हमारे जो नानतीन छू के करना और कोई कोई प्रकार का नशा और कोई गलत काम तो नहीं करना लगे और उनके समझाने चाहें बताने चाहें कि ये कतु दुष्परिणाम है सकनी। तो यह लीजिए उनके अपन जो बच्चों पर छून छू विशेष ध्यान ले देने चाहिए कि लेकिन अगर जब बच्चे सही हला नशा गिरफ्त अभी दूर हला तो उनका भविष्य जो छू उज्ज्वल है सकूँ। और विगत अगर अगर अगर हमारे जो आने वाले युवा छन नानतीन छन अगर उन भला ला तो देशक भविष्य ले उज्ज्वल है सकूँ। तो श्रोताओं अब आपके यो विषय में आपके सुनानु क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जो कि लोक कल्याण विभाग अधिकारी छन उनर डगर हम यो नशा निषेध दिवस पर कुछ बातचीत करने लग रही। तो आपके सुनानु दिलीप कुमार जी डगर करी गई है क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। का नाम?
1: मैं दिलीप कुमार अमेंद्र।
0: कहाँ रहते हैं सर आप?
1: मैं पिथौरागढ़।
0: क्या करते हैं?
1: मैं समाज कल्याण अधिकारी हूँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी भी पिथौरागढ़ में कार्य कर रहा हूँ।
0: अच्छा सर, जैसे नशा निषेध दिवस अब है जैसे तो ये आप एक बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है?
1: मैम जैसे 26 जून को इसका दिवस मनाया जा रहा है इस बार।
0: जी जी।
1: तो भारत सरकार से एक प्रोग्राम रखा है हमारे पास
0: जी,
1: जिसमें 17 जून से 26 जून तक ये कार्यक्रम किया जाना है जो ये वीक है, ये नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें इसमें जनपद पिथौरागढ़ में पूरे भारतवर्ष में तो इसका प्रोग्राम हो ही रहे हैं
0: जी,
1: और पिथौरागढ़ में भी इसके विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हमने विद्यालयों को इसमें इन्वॉल्व किया है। मैम विद्यालयों में जैसे नशे के विरुद्ध शपथ दी जा रही है
0: जी,
1: और क्या कहते हैं QR मिल रखा है हमें, तो उसमें QR के माध्यम से उसमें शपथ दी जा रही है कि मैं नशे के विरुद्ध हूँ और मैं अपने समाज को अपने क्षेत्र को और अपने जो भी हैं अपने अपने घर को अपने परिवार को मतलब नशे के विरुद्ध करूंगा, शपथ कराऊंगा और इससे अलग थलग रहूंगा। इसके अलावा हमने 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है
0: जी जी,
1: ये स्टेडियम में मनाया था, इसमें भी हमने जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग आए हुए थे, जिसमें जिलाधिकारी महोदय थे और विधायक जी थे, मेयर मैम थे और लगभग 1000 की जनसंख्या में लोग आए हुए थे, उसमें भी हमने इनको शपथ दिलाई। इसके अलावा एक इनिशिएटिव हमने ये भी लिया है कि इसमें इसके जो खेलों के माध्यम से भी नशे के विरुद्ध हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे हमने क्रिकेट मैच का आयोजन कर रखा है, क्रिकेट मैच का आयोजन 2-3 दिन के अंदर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाना है यहाँ स्टेडियम में। तो उसमें भी जो हमने विभिन्न स्कूलों को प्रतियोगिताएं कराई थी, जैसे पेंटिंग नशे के विरुद्ध, पेंटिंग और नशे के विरुद्ध निबंध और नशे के विरुद्ध भाषण प्रतियोगिताएं, ये सारी चीजें करवाई थी हमने। तो उन बच्चों को जहाँ से भी ये जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था
0: जी,
1: उनको हम पुरस्कृत करेंगे उसी दिन उसी कार्य दिवस में पुरस्कृत करेंगे। और 26 तारीख को एक नेशनल लेवल में और हमारे यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार में इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जो स्टेट लेवल का कार्यक्रम।
0: जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए जो भी आपके कार्यक्रम है ना, जैसे पेंटिंग है या फिर खेलों के माध्यम से है, ये सब इधर को अगर आप ध्यान आकर्षित करें युवाओं का जो किशोर है तो उनका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा तो शायद वो नशे की लत से दूर रहेंगे ना।
1: जी मैम।
0: अच्छा ये जैसे आपको क्या लगता है सर कि जैसे कई कई बच्चे आपने भी देखे होंगे आपके उधर भी और हर जगह हम देखते हैं ना कई बार कि बच्चे नशे का शिकार होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या मतलब उनको क्यों होते होंगे वो?
1: उसमें एक तो ये होते हैं कि जैसे बच्चे स्कूल लेवल से ही
0: जी
1: इसके आदि पाए जा रहे हैं, जैसे पिथौरागढ़ जनपद में एक जो नशे के संबंध में एक हब टाइप का बना हुआ है पिथौरागढ़
0: जी,
1: बहुत सालों से हब टाइप का बना हुआ है।
0: हाँ, बहुत जगह तो, यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग अल्मोड़े में भी, हर जगह ना कहीं कई जगहों पर भी देखने को मिलता है नशा, तो सभी जगह ये आजकल लत फैली हुई है।
1: जबकि इसमें कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं हमारे ओर से भी कार्यक्रम होते हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कार्यक्रम है,

0: उसकी जागरूकता जन जागरूकता की प्रति और पुलिस वालों के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हम हमारा चल रहा है मैम, प्रयास चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक हम इसमें हो रहेंगे, कामयाब रहेंगे।
1: जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के घरों की परिस्थिति स्थिति ठीक नहीं होती है,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: ध्यान वगैरह नहीं देते तो भी वो उस ओर भटकते हैं। माँ बाप की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि माँ बाप की
0: महत्व
1: कितनी?
0: माँ माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका है मैम इसमें,
1: हाँ
0: पूरे समाज की तो है ही है,
1: जी
0: लेकिन जो हमारे जो स्टार्टिंग होती है वो अपने घर से होती है।
1: जी
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: हम अपने घर में नशा करते हैं, वो करते हैं, हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा। पहले कहते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं, वो तो बोलते दादाजी ये क्या क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं

0: की माँ बाप की कितनी
1: माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका है मैम इसमें, पूरे समाज की तो है ही है,
0: जी
1: लेकिन जो हमारे जो स्टार्टिंग होती है वो अपने घर से होती है।
0: जी
1: जैसे हम अपने घर में नशा करते हैं, वो करते हैं, हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा, पहले कहते हैं जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं वो, तो बोलते हैं दादाजी क्या क्या कर रहे हैं आप, तो कहते बेटा मैं दवाई खा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ। अब उनको भी थोड़ा थोड़े बड़े होते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि ये दवाई ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं
0: क्या ले
1: करके।
0: रहे हैं। हाँ हाँ
1: जी, तो ऐसे ही अब उनको भी पता रहता है कि अगर हमारे दादाजी लेते थे, हमारे पिताजी लेते हैं, हमारे चाचा लेते हैं, पूरा समाज लेता है, और उसमें क्या पता कुछ अच्छा ही होता होगा, वो ऐसे ही स्टार्ट करता है। और स्मैक वगैरह वो चीज़ें भी रहती हैं, घर से ही स्टार्ट, घर से ही ऐसा माहौल बनाना चाहिए मैम
0: जी
1: जिसमें
0: बिल्कुल।
1: हमारा जो हमारे बच्चे बच्चों को अगर आदि भी है तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो चीज़ें हैं, तो उनको मतलब अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल वो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि कल के दिन अगर अभी अभी हम ऐसा कर रहे हैं, पहले उनको उनके दुर्व्यवहार के बारे में उनको खुद पता रहता है, उसके बाद भी वो आदि होता है तो छोड़ता नहीं, लेकिन अपने बच्चे के प्रति तो कोई वो नहीं सोचता है कि मेरा बच्चा भी आदि हो। लेकिन अगर उसी में थोड़ा अगर वो चीज़ें करें, बच्चों के सामने वो चीज़ें ना करें या धूम्रपान ना करें, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि जैसे धूम्रपान में कहते हैं हम सोचते हैं कि हम पी रहे हैं, हम पी रहे हैं इसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको भी इनडायरेक्टली इसको भी फर्क पड़ता है बच्चे को।
0: बिल्कुल, अगर हम जैसे बच्चों के आगे जो काम करते हैं ना, वो तो वो झट से अपना लेते हैं उस चीज को, घर से ही अपना जो बच्चों का देखभाल अच्छी होनी चाहिए। और माँ बाप को ये ध्यान रहना चाहिए कि बच्चा कहाँ गया है, क्योंकि अपने बच्चे की जानकारी होनी चाहिए वो कहाँ है क्या है, तो उससे क्या होता है कि जैसे नशे की लत में नहीं जाते हैं ना बच्चे।
1: कुल मिला के पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा बच्चा जैसे स्कूल का टाइम रहता है, बच्चे स्कूल का टाइम तो स्कूल में रहता है,
0: कई
1: जैसे
0: बच्चे स्कूल से भी मैं देखती हूँ इधर उधर घूमते रहते हैं, फालतू नशा करते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी जी वो चीज़ें रहते हैं, तो बच्चों का ये पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि
0: जी।
1: जैसे हमारा बच्चे की स्कूल की क्या टाइमिंग है, जैसे 7 बजे का स्कूल है तो कितने बजे जाएगा और कितने बजे आएगा, जैसे 12 बजे है,
0: हाँ
1: 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो 1 बजे 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, तो उसको
0: हाँ
1: पूछने का कर्तव्य किसका है, माँ बाप का है,
0: जी
1: कि वो
0: बिल्कुल।
1: पूछे कि भैया बेटा तू कहाँ था इतनी देर तक, क्या था ये स्कूल वगैरह, तो बच्चा हिचकेगा। अगर एक दिन हम बच्चा सोचेगा कि मेरे से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो
0: जी
1: बच्चा कभी 3 बजे आएगा, कभी 4 बजे आएगा, ये चीज़ें रहती है। जैसे टीचर के प्रॉपर टीचर के उसमें टच में रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए कि मेरा बच्चा आ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं करके ना, और छुट्टी
0: हाँ
1: हुई तो कितने बजे हुई, ये चीज़ें
0: जानकारी हाँ जी लेनी चाहिए।
1: जानकारी होनी चाहिए मैम इस पूरी बात में,
0: क्योंकि नशा तो एक ऐसी लत है, अगर बच्चा उसमें चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता है?
1: नहीं आ सकता मैम वहाँ।
0: सर अच्छा ये बताइए सर कि जैसे ये दवाएं हैं जो नशीली दवाएं हैं, नशीला जो भी पदार्थ जो लेते हैं जिससे नशा होता है, उसको हम कैसे कम किया जा सकता है कि जिससे कि बच्चे मतलब ना ले या उनको ना मिले, दुर्लभ हो मिलना ऐसा?
1: वैसे तो अब इसकी छापामारी पुलिस की ओर से होती है मैम ना, छापेमारी होती है या कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो इसमें एक समाज ही इन्वॉल्व है ना मैम, पूरा
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: पूरा एक समाज इन्वॉल्व है, जैसे कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी एक कदम उठाने चाहिए, जहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें इसमें रोक लगानी चाहिए। जैसे कई दवाइयाँ ऐसी हैं यहाँ, मैं बैन है लेकिन चल रही है उन्हें दवाई, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम ऐसा करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक समाज समाज को आगे, केवल ये सरकार का ही काम नहीं है, केवल एक सरकार का, हम सोचते हैं कि सरकार का ही काम है कि सरकार करे जन जागरूकता फैलाए, वो चीजें करेगी, जब तक आप नहीं सोचोगे मैं नहीं सोचूंगा कि नहीं नहीं मेरे आने वाले भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में हमने अच्छी सोच बनानी है, देश को आगे ले जाना है, तो तभी हम सफल हो पाएंगे इसमें कुल मिलाकर। जैसे हमें एक एक 17 तारीख से 26 आए थे एक कार्यक्रम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि खाली हमने एक कार्यक्रम कर लिया तो इससे हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये चीजें नहीं है, तो इसमें जब तक जनता को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे मैम, तब तक इसमें वो नीचे वो चीजें नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल जनता को जागरूक करना ही पड़ेगा, और जनता में भी सबको सोचना चाहिए, पेरेंट्स हैं वो है कि हम अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो ना, तो सभी का अपना अपना कर्तव्य है, जब सभी पालन करते हैं तो तभी हो सकता है, क्योंकि एक या दो पर अगर हम कोई भी बात थोपे या खाली ये दिवस मनाने से नहीं होता, बल्कि उसको लागू भी करना चाहिए ना,
1: लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक उसमें होना चाहिए कि हाँ ये चीजें इसमें हमारे क्या क्या नुकसान है, हम तो जागरूकता फैलाएंगे, जैसे हमने जागरूकता फैला दी, एक मिशन मैंने कहा आपसे, जैसे 1000 बच्चे आए थे, 1000 लोग आए थे यहाँ स्टेडियम में, हमने इसमें कुछ सफर दी, तो उसमें हमने बताया कि नशे के नशे जो नशा करेगा उसमें क्या क्या आप क्या क्या खामियां हो सकती हैं, अब वो अपने फैमिलीज को बताएंगे वहाँ, वो चीजें करेंगे तब वो सफल हो पाएगा। जैसे हमने 1000 बच्चे को कर दिया तो अन्य जगह तो चल ही रहा है ना मैम।
0: क्यों नहीं, अच्छा ये बताइए ना सर, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो नशे की लत में है

0: लेकिन हम कैसे पहचाने उसको कि वो नशा करता है या उसको लत लगी हुई है, जैसे शीशे ही कर रहा है या कैसे कर रहा है करके।
1: कई चीजें हैं मैम, जैसे हम नशा मुक्ति केंद्र करके है, तला तो उसको एनजीओ रहा है, भारत सरकार से हट दिया जा रहा है, वो भी कार्यक्रम करते हैं इसमें कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो, जैसे फैमिलीज को लगता है तो उसकी काउंसलिंग हम यहाँ करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो जैसे उनको जानकारी रहती है, पेरेंट्स को तो पता चल जाता है, जैसे व्यवहार ही है मैम, जैसे किसी का बच्चे का व्यवहार हो, पहले कुछ और करता था, अभी नशा कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट में क्या रहता है उसको नशा कम लगता है, तो उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, जैसे कि लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा हो रहा है उसी जगह करके, कि काउंसलिंग के लिए जैसे अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में बेस में नशा मुक्ति केंद्र चला रही सरकार, जैसे पिथौरागढ़ में एक एनजीओ के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें काउंसलिंग टाइम टू टाइम काउंसलिंग, और दूसरी चीज ये होना चाहिए मैम, जैसे विभिन्न विद्यालयों में, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में भी होता है होने के लिए, लेकिन सरकारी विद्यालयों में ज्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि जैसे हम काउंसलिंग कार्यक्रम है वो हमें वहाँ स्कूलों के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से वहाँ भी किया जाना चाहिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना रोए, कोई अगर इसमें चले भी जाता है तो अगर कम उसको कम समय हुआ गया हुआ तो वो वापस आ सके।
0: अच्छा हाँ, मतलब कम अगर समय नशे की गिरफ्त में है तो वो ठीक हो सकता है,
1: जी
0: मतलब ना
1: जी जी हाँ वही
0: जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप जो युवा हैं और किशोर हैं, उनसे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य है, तो अपना उज्जवल भविष्य देखें और नशे की लत से दूर रहें, इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर बच्चे को अगर भविष्य अगर अपना संवारना है, देश का भविष्य संवारना है, भविष्य संवारना है, तो नशे के बिल्कुल खिलाफ हो, अपने घर परिवार से इसका, अपने परिवार से इसका कार्य करना चाहिए, जैसे हमारे पिताजी होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, अगर कोई नशा कर रहे हैं तो उनको उन नशा के नशे के दुष्प्रभाव बताओ कि वो चीज़ें करें, ताकि भविष्य आगे उज्ज्वल हो, नशे की गिरफ्त में अगर कोई बच्चा आ जाएगा तो उसका कुछ नहीं है फिर, ना वो अपना करियर बना पाएगा,
0: नहीं, कुछ भी
1: दूर की
0: नहीं,
1: देश की बात, दूर की
0: बहुत
1: बात है,
0: दूर
1: उतना
0: है।
1: ही
0: हाँ
1: करियर नहीं बना पाएगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो
1: जी
0: इसीलिए युवाओं को जो है नशे की लत से दूर रहना चाहिए।
1: हाँ
0: आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी कि नशे की लत जो है खराब होती है, हानिकारक है, उससे दूर रहना चाहिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोता अल्लाहपुर नशा निषेध दिवस पर पिथौरागढ़ में लोक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार जी से गडकरी के ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुनी, इन्हें दगड़ बातचीत करने लग रही थी लता कपूर। और श्रोताओं, आज मुहर्रम थे और इस्लामिक कैलेंडर के पहल महीन और सालक चार सबूह के एक भल पवित्र महीनों में से एक मानी जा, ये महीन शांति संयम और इबादत का प्रतीक मानी जा इस्लाम में, और इमें दुनिया भर जो मुस्लिम समुदाय छू वो इमाम हुसैन शहादत की याद में चोकर बलिदान के रूप में एक छू वो मनानी। और छो तो आज 26 जून हूँ छत्रपति साहू जी महाराज जो छू उनले जयंती मनाई जाए, और कोल्हापुर की आसिक महान राजा और एक दूरदर्शी समाज सुधारक ले छिए, और भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण जनक इनके मानी जा, इनूल दलितों और शोषितों उत्थान और शिक्षा प्रचार प्रसार और छुआछूत मिटाने के लिए अनेक प्रकार के ऐतिहासिक जो काम छू करो, और शिक्षा अधिकार के लिए इनूल कोल्हापुर में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शुरुआत करी, और हर वर्गक जो बच्चे छन उन्हें लीजिए स्कूल और छात्रावास बनाई गई, और सामाजिक समानता के लिए उन्होंने छुआछूतक विरोध करो और अंतर्जातीय विवाह के कानूनी मान्यता दे, और महिलाओं को उत्थान के लिए अनेक प्रयास करी जेल की उनके आज ले जानी जा, और उन्होंने ये महान कार्य और सामाजिक उत्थान में दी गई योगदान विल उनर जयंती के प्रतिवर्ष सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जा। और शुदा कार्यक्रम में अब अखिल आपके हम पुरानू योग गीत

0: श्रोता कार्यक्रम में लापूल समूह स्वर में गाई हुई योग गीत सुनो। श्रोताओं, हमारे जीवन में देखो योग बहुत ज़रूरी छो, लेकिन अगर हम स्वस्थ रह जानू और हम जानू कि हम स्वस्थ जीवन जियो, एक प्रसन्न जीवन जियो, तो हमें रोज़ जो छो योग करना चाहिए, लेकिन ये सबने के लिए लाभकारी छो। और योग जो छो एक प्राचीन अभ्यास छो जो कि शरीर के स्वस्थ धरो और कई बीमारियों हमें हमसे दूर करो और मन के शांत धरो और वीके दगर दगर हमारे शरीर के मजबूत और लचीला ले बना। और अगर हम रोज़ कोई न कोई प्रकार का आसन करनो, योग करनो, तो वील रक्त संचार ले बेहतर हो और हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता छो उले बहुत बढ़िया बनी रहे। और वीके दगर दगर हमारे जो तनाव छो, चिंता छो उले दूर थके। तो तन मन के प्रसन्न धरने के लिए हमको कोई न कोई योग का अभ्यास जो छो जरूर करें थे। और अब आपको सुना में यो भेद क्षेत्र संकलित भेद वार्ता योगा फॉर मोबिलिटी और बैलेंस विषय पर, जो कि हमके इमें जानकारी देने लग रही शिक्षक, योगा शिक्षक मनमोहन सिंह कैड़ा और इन्हें दगर बातचीत करने लग रही लता कपूर।
1: आपका नाम?
2: जी नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन सिंह है।
1: मनमोहन, क्या करते हो आप?
2: मैं योगा ट्रेनर।
1: अच्छा, कहाँ पे आप सिखाते हो?
2: मैं यूनियन अल्मोड़ा।
1: अच्छा, ये बताइए ना, जैसे योग से आप जुड़े हो, तो योगा मत क्या है?
2: मैम, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका सामान्य अर्थ है जोड़ना या एकता। योग शरीर मन और आत्मा के बीच में संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम। योगा के हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और तनाव और चिंता को कम करने के लिए।
1: किस प्रकार से, जैसे योग से हम अपनी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं?
2: देखिए, मोबिलिटी का एक सामान्य अर्थ है गतिशीलता, यानी कि जब आपके शरीर के जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जो योग होता है, उसे पूरी सीमा तक, मतलब जिस सीमा आपकी जो एबिलिटी होती है उस सीमा तक स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, आपके शरीर में लचीलापन आता है और ये नियंत्रण, यानी कि बैलेंस को और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को दोनों को मेंटेन करके चलता है। जैसे हम अभी अपने शोल्डर रोटेट करते हैं या अपने कंधों को पीछे को स्ट्रेच करते हैं, तो ये मोबिलिटी

0: और इसका मोबिलिटी का एक फायदा होता है, इसमें हमारे चोट का खतरा कम रहता है। मजबूती मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे हम अपनी मांसपेशियों की ताकत करते हैं, जिसमें हम वजन उठा सकते हैं या दबाव झेल सकते हैं। ये जो होता है मसल्स को मजबूत करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए होता है। जैसे हम पुशअप करते हैं, हनुमान दंडासन करते हैं, हिंदू दंड करते हैं, तो ये सब हम स्ट्रेंथ के लिए करते हैं।
1: गतिशीलता और मजबूती में क्या अंतर है?
0: अगर आसान भाषा में कहें तो गतिशीलता, हम अपनी बॉडी को कितनी आसानी से हिला सकते हैं, और मजबूती हम अपनी ओर से कितना जोर लगा सकते हैं, यानी कि मजबूती हम हमारा शरीर कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना ज़्यादा सहनशील है। और इसी के विपरीत जो हमारी मोबिलिटी है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपनी बॉडी कितनी हमारी फ्लेक्सिबल है, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी का आ
1: तो
0: जाता
1: ये जो योग है हमारे पूरे शरीर की गतिशीलता को कैसे बढ़ाता है?
0: है। मैम योग हमारी गतिशीलता को, जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे रीढ़, कंधे, कूल्हे, घुटने लगातार हिलते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जॉइंट स्टिफ रहते हैं और खुलते हैं, हमारे जो स्टिफ जॉइंट्स होते हैं, स्टिफ मसल्स होती है, वो ओपन होते हैं। लंबे समय में एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं तो स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके जो हमारी मोबिलिटी है, इससे हमारी मांसपेशियां आराम से लंबी और लचीली हो जाती है, यानी कि फ्लेक्सिबल आ जाते हैं, और इसी से कंट्रोल बढ़ते हैं। यानी कि योग में सिर्फ हम खिंचाव ही नहीं करते हैं, अपनी जो भी हम आसन करते हैं, जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें नियंत्रण भी लेके आते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं। तो इसके हमारी योग से हमारी मोबिलिटी के साथ साथ हमारी बॉडी में कंट्रोल भी बना रहता है।
1: जी बिल्कुल, पूरे शरीर की गतिशीलता बनी रहती है ना। हर उम्र के व्यक्ति के लिए योग होता है, तो किस उम्र के व्यक्ति को किस प्रकार के अलग अलग आसन है या योगासन है वो करनी चाहिए?
0: साधारण देखा जाए तो योग सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। इसका योग का कुछ मुख्य उद्देश्य, जैसे अभी बच्चे हैं, सबसे शुरुआती माना जाता है कि 5 साल से बच्चे को योग करना शुरू कर देना चाहिए। जो 5 साल के बच्चे, 5 से 12 साल के अभी बच्चे हैं, उन्हें उनका जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, लचीलापन, संतुलन और ध्यान के होने चाहिए। जैसे हम उसमें कुछ आसन कर सकते हैं, ताड़ासन, वृक्षासन, इस टाइप से। क्यों, मैं हमें युवा को खेल खेल में अपनाना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा उसके प्रति एक्सेप्टिव हो। फिर किशोर अवस्था आती है 13 से 19 साल के बच्चों के लिए। इसका हम मुख्य लक्ष्य अपने शरीर के विकास के लिए ले सकते हैं, एकाग्रता के लिए ले सकते हैं। इसमें हम अपनी तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, हमारे आसन है, हल्के स्टैटिक आसन है। तो इसमें योग का फायदा भी है, जैसे हमें पढ़ाओ पढ़ाई में काम करता है, मतलब स्टेमिना बढ़ाने में काम करता है, फोकस करने में काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमारी किशोर अवस्था में। फिर इसी में आ जाते हैं हम युवावस्था में 20 से 40। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, अपने फिटनेस के लिए और ताकत के लिए, जैसे अभी बात करी थी स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए हम 20 से 40 साल के जो युवा होते हैं वो इसका करते हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार को बढ़ा सकते हैं, डायनेमिक वे पे ले सकते हैं, शक्ति बढ़ाने वाले आसन कर सकते हैं, जैसे वीरभद्रासन, नौकासन। साथ ही साथ प्राणायाम और ध्यान हर उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। इसी में हम और आगे की आयु की ओर बढ़े, 40 से 60 की ओर को बढ़े, तो इनका जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जोर की सेहत में होना चाहिए, मतलब इनका फोकस अपनी बॉडी के प्रति अवेयर होने के लिए और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए होना चाहिए। ये छोटे मोटे आसन कर सकते हैं, हेल्थी स्ट्रेचिंग वाले आसन कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, और धीरे धीरे सूर्य नमस्कार कर।
1: जैसे योग हमारी मजबूती बढ़ाता है, तो उसके संग संग कोई ऐसा आहार भी है जो हमें योग के दौरान लेना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहे?
0: अगर हमने अपनी बॉडी को फिट रखना है, हमें अपने को फिजिकली और मेंटली, योग हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। हम फिजिकली और मेंटली तभी फिट हो पाएंगे जब हमारा आहार अच्छा होगा। आहार में हमें सात्विक भोजन अपनाना चाहिए, जैसे हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, भोजन बनने के 3 से 4 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए, उसके बाद उसे खराब माना जाता है। और हमें प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ताजे फल, स्प्राउट्स, तो ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। मैदा की जगह हमें आटा, दलिया, ब्राउन राइस, इस टाइप के भोजन लेने चाहिए। और जो हमारे तामसिक और रात्रिक भोजन है, इन सब में बचना, जैसे बासी और फ्रोजन खाना। आजकल हम देखते हैं कि हमारा खाना बच जाता है, हम उसे फ्रिज में रख देते हैं और फिर अगले दिन खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए। और भोजन की मात्रा भी होती है, जैसे आधा पेट भोजन, पेट का जो 50% हिस्सा है ठोस भोजन से भरे, यानी कि हमारी रोटी है, चावल है, और जो 1/4 है वो हमें पानी से भरना चाहिए, यानी कि हमारे लिए जितना आहार है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए पानी भी है।
1: योगासनों का अभ्यास जैसे हम करते हैं ना, योग अभ्यास करते हैं, तो सप्ताह में कम से कम कितनी बार हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर जो है संतुलन में रहे?
0: योग अभ्यास डेली ही करना चाहिए, कम से कम

0: का अभ्यास 3 से 4 बार योग का अभ्यास तो हफ्ते में जरूर करना चाहिए। सप्ताह में जो अभी शुरुआती में जो नए बिगनर्स होते हैं वो सप्ताह में इसे 3 दिन कर सकते हैं अल्टरनेट बेस 30 से 45 मिनट के बीच में। फिर जो मध्यम स्तर के लोग आते हैं वो इसको 4 से 5 दिन कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: और जिनको आदत है वो डेली ही करना चाहिए।
1: अच्छा ये बताइए, जैसे योग से हमें इतने सारे लाभ हैं, कई कई लोगों को जानकारी होती है लेकिन फिर भी वो इस ओर नहीं आते, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में कि योग जो है उससे इतने अनेकों लाभ हैं, योग को अपनाना चाहिए?
0: मेरी ओर से एक ही संदेश रहेगा, योग हमें केवल शारीरिक नहीं हमें मानसिक लाभ भी प्रदान करता है, और मानसिक लाभ के साथ साथ ही हमारे मन और आत्मा के बीच में संतुलन बना के रखता है। जैसे हमारे शारीरिक लाभ लचीलापन है, मजबूती है, बेहतर पाचन है, और साथ ही साथ इसके मानसिक लाभ भी है, तनाव से मुक्ति है। साथ ही हम इसमें अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जैसे हम सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म में हम अपनी बॉडी क्लीनिंग करते हैं, यानी कि हमें हमारी बॉडी में जितनी भी गंदी चीजें हैं हम उन्हें बाहर निकालते हैं, चाहे वो हमारी रबर नीति के थ्रू हो चाहे वो हमारी सूत्र नीति के थ्रू हो, तो ऐसे करके हम अपनी चीजों को दूर करते हैं। इसलिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि हर उम्र के व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग 30 से 45 मिनट हर रोज योग करना चाहिए।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि योग जो है उससे अनेकों लाभ है और उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस आपने इतनी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी योग से संबंधित, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता अल्लापुल योगा शिक्षक मनमोहन सिंह केड़ादगर, योग फॉर मोबिलिटी और बैलेंस विषय पर अपूल्य जानकारी सुनी। इनर दगर बातचीत करने लग रही थी लता कपूर।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए हैं एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: बेटी के लिए गहने बनवाए हैं एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: बेटी के लिए।
3: और श्रोताओं, ये कदगढ़ हमारे आज उत्तरायण कार्यक्रम इसी के संपन्न हूँ, और कार्यक्रम में आपूदगढ़ लता कपूर अगिल आपूदगढ़ भेंट करें, तब तक हमके कार्यक्रम में आगे दियो। नमस्कार।

अभी आप उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उत्तराखंड उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। और अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 सीईई परीक्षा संपन्न। परिणाम घोषणा के बाद जल्द शुरू की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर में सेब, अखरोट और बादाम सहित उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के उत्पादन के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़ी नर्सरी स्थापित करने वालों को 4 करोड़ रुपये व छोटी नर्सरी स्थापित करने वालों को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के चौबटिया में 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के सहयोग से 15 करोड़ रुपए की लागत की विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री ने 9 योजनाओं का लोकार्पण व 32 कार्यों का शिलान्यास किया।

0: राज्य सरकार जल्द ही 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना की धनराशि जारी करेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना के तहत 484 महिलाओं को पहली किश्त पहले ही दी जा चुकी है और अधिकांश महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर चुकी हैं। श्रीमती आर्या ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।
1: एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है उनको समर्पित की है, ताकि वो अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर पाए। तो 484 लोग अपने स्वरोजगार लगभग किए हुए 3 महीने या 4 महीने करीब हो गए हैं। लोगों ने अपना स्वरोजगार को अब स्थापित भी किया है, जो बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही हमें शेष जो है 211 महिलाओं को अभी एकल महिला स्वरोजगार योजना से और जोड़ना है, जिसको लेकर आज विभाग की बैठक करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय का आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द समय दें, ताकि जो है 211 जो हमारी शेष महिलाएं हैं 2025-26 की, तो उनको हम जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना से उन्हें DBT करते हुए उनको उनके स्वरोजगार करने के लिए जो है उनको हम आर्थिक मदद कर पाए।
0: सीमांत जनपद चमोली में इन दिनों चार धाम व हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। तनाव मुक्त वातावरण में 2 माह में बद्रीनाथ धाम में अब तक 13,04,000 व हेमकुंड साहिब में 1 माह में अब तक 1,43,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, वहीं इसके साथ हेमकुंड साहिब में माथा टेक चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बीते दिनों कर्णप्रयाग में हुई घटना के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और अब यात्रा पूरे जोर पर संचालित हो रही है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य में पहली बार उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। इससे न केवल राज्य के मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। राज्य की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों ने उत्पादित ट्राउट मछली का निर्यात किया है। इन मछलियों को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23,50,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन पर 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से भी संपर्क स्थापित किया है, जिससे भविष्य में निर्यात की संभावनाएं और मजबूत होंगी।
3: ये देखिए, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने फिशरी सेक्टर को पिछले 4 साल में लगातार सपोर्ट करके इस स्थिति पे पहुंचाया कि आज हमने पहली बार पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन अपनी हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके, ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोज़गार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे वो काम करने के लिए।
0: हरिद्वार में विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं देश भर में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति लगातार नशा मुक्त अभियान को गति दे रही है, इसके अलावा युवा भी जागरूक हो रहा है।

0: नशा मुक्त भारत अभियान 17 जून से प्रारंभ होकर और आज इसका समारोह देव संस्कृति विद्यालय के इस पावन परिसर में शांति कुंज से प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर में विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन किया गया। ऐसे विशेष 3 राज्यों को, 3 जिलों को और 3 प्रमुख एनजीओ को सम्मानित भी किया गया। और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है, ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंत प्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, सशक्त होगा, तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
1: थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के एआरओ कर्नल महेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित सीई परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सेना की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्नल महेश कुमार ने बताया कि एआरओ अल्मोड़ा के अंतर्गत आने वाले अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अभ्यर्थियों के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उत्तराखंड उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। और अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 सीई परीक्षा संपन्न। परिणाम घोषणा के बाद जल्द शुरू की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं लता मंगेशकर के गाए भजन से।

0: चंदू आत्मा के गए इसी भजन के साथ आवाज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम मंगाई। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर मां विभिन्न केंद्र योजनाओं को लोकार्पण करी, किसानों बटी प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों थे अपनाने का आवाहन करी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन, घटती भूजल स्तर और माटे की बिगड़ स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर देने। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बटी 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछों तय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठे गयी और नशा का खिलाफ जनगणना अभियान चलान का वास्ता हरिद्वार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार का भी समझौता वाई। अब समाचार विस्तार बटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोली कि उत्तराखंड है बागवानी का क्षेत्र मां नहीं पहचान दिलान का वास्ता और किसानों की आय बढ़ाने का वास्ता केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठानी चा। रुद्रपुर मां केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण और खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम थे संबोधित कर दे बगत उन किसानों बटे आधुनिक तकनीक अपनान का वास्ता प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों थे बढ़ान देन को आवाहन करी। केंद्रीय मंत्री ने बोली कि किसानों थे गुणवत्ता और रोग मुक्त डाल उपलब्ध कराने का वास्ता मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपयों की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करे जालू। ये का अलावा अल्मोड़ा का चौबटिया में भारत नीदरलैंड सहयोग बटी 15 करोड़ रुपयों की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करे जाली। केंद्रीय मंत्री किसानों बटी रासायनिक खाद और कीटनाशकों तय संतुलित उपयोग कन और मिट्टी का स्वास्थ्य से सुरक्षित रखने पर जोर देनी।
2: ये अभियान है खेत बचाओ अभियान। मेरे भाई और बहनों, खाद का प्रयोग करने में मना करने नहीं आया। संतुलित प्रयोग से जमीन को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक साल एक बोरी, अगले साल डेढ़ बोरी, फिर उसके बाद दो बोरी, उसके बाद ढाई बोरी, उसके बाद तीन बोरी। आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन

0: ये धरती माता लगातार खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं आज हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो।
1: केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घड़ी भूजल स्तर और माटे की बिगड़ स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दी। उन बोली कि विकसित भारत को लक्ष्य तभी पूर्व होलू जब कृषि विकसित होली और किसान समृद्ध होला। वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित द्विदिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन थे संबोधित कना छा। ये अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व छात्रों बटी कृषि अनुसंधान नवाचार स्टार्टअप और युवाओं का मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देण को आवाहन करी। उन बोली की पर्वतीय कृषि छोटो जोत जंगली जानवरों से फसलों थे होने वाला नुकसान पलायन और जलवायु परिवर्तन जन चुनौतियों को सामना करना छन, जका समाधान अनुसंधान और नवाचार से संभव छा।
2: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
1: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों का स्टॉलों को निरीक्षण करी, विद्यार्थियों से संवाद करी और सट्टियों की रूपणी में भी हिस्सा लिया।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: उत्तराखंड बटी राज्य गठन का बाद पहली बार 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछो थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजे गयी। मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बौणन देहरादूनम प्रेस वार्ता में बताई कि पिथौरागढ़ जिला का धारचूला और मुंसारी क्षेत्र की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों ने राज्य सरकार का सहयोग बटी नेपाल थे माछा निर्यात करी।
4: मत्स्य विकास मंत्री ने बताई कि माछोते कोल्ड चैनक माध्यम से गुजरात का वेरावल भेजे गए, जग उथे प्रसंस्करण बाद 23 जून खुणी नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करेगी। ये से 33 माछा पालन वालों थे लगभग 23,50,000 रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। ये निर्यात है प्रोत्साहित करना खुणी मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग पैकेजिंग और परिवहन खुणी 5,40,000 रुपए की सहायता भी उपलब्ध करे।
5: पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोज़गार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे।
4: श्री बहुगुणन बताई कि विभाग अब यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भी निर्यात की संभावना पर काम करनु छ और आने वाले दिनों में लगभग 30 टन माछों की निर्यात की तैयारी करे जानी छ। उन बताई कि साल 2024 में ITBP दगड़ हुई समझौता के तहत अब तक 45.10 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की आपूर्ति करे जा चुकी छ, जैक मूल्य 2,10,00,000 रुपए छ। आकाशवाणी देहरादून कुणी समाचार कक्ष बिटी अमित सुंदरियाल।
1: विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस का अवसर पर हरिद्वार में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह को समापन हुआ। ये दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे गया। ये का तहत द्विदिवसीय संस्थाएं ये का वास्ता द्विया संस्थाएं देश भर में नशा का खिलाफ जन जागरण अभियान चले की लुखूत जागरूक कर ली।

0: ये अवसर पर शांतिकुंज बटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक निकले ग्याई नशा मुक्ति रैली में 2000 से ज्यादा स्वयंसेवकों, युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों ने भाग लेकर नशा मुक्ति भारत का संकल्प लियाई। कार्यक्रम थे संबोधित कर दी भगत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बोली कि नशा केवल आदमी ही नहीं बल्कि पूर्व परिवार और समाज से प्रभावित कर दू। उन बोली कि जब देश को युवा नशा से दूर होलू तो भारत अपनो विकसित राष्ट्र को लक्ष्य थे पाण की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लू।
1: और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है, ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंत प्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, सशक्त होगा, तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।

0: समाज से प्रभावित कर दू। उन बोली कि जब देश को युवा नशा से दूर होलू तो भारत अपनो विकसित राष्ट्र को लक्ष्य थे पाण की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लू।
1: और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, सशक्त होगा, तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
0: उत्तराखंडम दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगमन की प्रस्तुति अनुकूल वेग आई। मौसम विभाग के अनुसार अगला 3 से 4 दिनों में मानसून राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंच सकदू। गीका दगड़ी ही पर्वतीय जिलों का वास्ता गगड़ाट चमकाट तेज बरखा और झोंकदार हवाओं थे लेकिन येलो अलर्ट जारी करे गया। मौसम विभाग केंद्र देहरादून 30 जून तक पर्वतीय जिलों में कखी कखी गगड़ाट चमकाट का दगड़ी आकाशीय बिजली चमकण और बरखा का तीव्र से अति तीव्र दौर और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकदार हवा चलन को अनुमान जताई। 30 जून खुण पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला में कखी कखी भारी बरखा होने की भी संभावना चा। उखी अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नीचा लेकिन यहाँ का बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती। मौसम विभाग अन लुखों से खराब मौसम का दौरान सतर्क रहने की अपील कैरी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियालन आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कैरी। ये दौरान द्वीय नेताओं के बीच उत्तराखंड का विकास और विभिन्न जनजातीय और सामयिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री उनियालन सीमांत क्षेत्रों का विकास और राज्य का सामरिक महत्व थे लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना कैरी। उन बोली कि उत्तराखंड की प्रगति और सुरक्षा से जुड़ा विशेष विषयों पर केंद्र सरकार को सहयोग राज्य का विकास है नई दिशा देना छन। ये अवसर पर उन उत्तराखंड का प्रति सहयोग और मार्गदर्शन का वास्ता केंद्रीय रक्षा मंत्री को आभार भी व्यक्त करे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लोकार्पण कैरी। किसानों से प्रकृति खेती और पारंपरिक फसलों थे अपनाण थैले की आवाहन कैरी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन घटती भूजल स्तर और माटे की बिगड़ स्वास्थ्य जन चुनौतियों का समाधान का वास्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर देनी। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड से 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछों थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठे गई और नशा का खिलाफ जन जागरण अभियान चलान का वास्ता हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार का भी समझौता हुआई। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों को अंक भी समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता स्वागत छु कार्यक्रम ग्राम जगत में। दगड़ियों खेतपत से जुड़ी हुई कई सारे यश काम छे जो हमारे आजीविका के बढ़े सकनी, हमारे आर्थिक स्थिति के भल कर सकनी, और हमारे आर्थिक स्थिति के अलावा हमारे जलवायु प्रकृति माट इन सबने के लिए वो फायदेमंद हो सको। तो दगड़ियों यसे एक जक हम आज बात करने लग रही हूँ उछू एलोवेरा जक हम घृत कुमारी को नहीं देखियो हम देखने लग रही कि एलोवेरा के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात होने लग रहा है। और एलोवेरा जो गुण छे वो गुणों के बजाय एक सबसे ज़्यादा मांग होने लग रहा है। और हमारे आयुर्वेद में ले एलोवेरा घृत कुमारी महत्व का बताई गो। और इनमें जो सबसे भल फैद एलोवेरा हूँ जो हमारे बंजर और जो पथरीली माट वाली जमीन है उसमें उपजा और हमारे भूमि कटाव यानी कि जब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा द्यो हूँ और बहुत ज़्यादा द्यो में माट बगी पर तली ढलानों में नह जाँ तो ये माट को रोपना कामला करूँ। लेकिन अब जो जड़ हुई वो माट में काफ़ी गैर तलग हुई और माट को पकड़ कर धरनी। यह अलावा एक औषधि गुणों की अगर बात करूँ तो यह घाव भरण जैसे कथा कर लग गए तो इसमें को लगाई जा सकूँ। अगर त्वचा में या हमार जो कुछ में जलन पड़ने लग रहे तो इसमें ठंडक प्रदान करूँ। यह अलावा और कई सारे उपयोग यक हो सकूँ। और दगड़ियों हम यहाँ देख सकूँ कि अगर हम यह खेत के व्यावसायिक तरीकल करूँ तो एक हम छोटम यूनिट या हम कह सकूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रसंस्करण यूनिट जमें कि जो हमार स्थानीय भाई बहनी छ यक जेल जूस बना सकनी, साबुन बना सकनी, शैम्पू और क्रीम बना सकनी। ये मैं कैसी बनाओ यह बारे में उनको ट्रेनिंग लेना पड़े, प्रशिक्षण लेना पड़े। लेकिन यह एक तरीक से कि यक बने हुए ऊँक अपन आजीविका को बढ़ा सकनी। और गाँव श्रेणी मिलबेर महिला स्वयं सहायता समूह बने वेर लें ये मैं जुड़ सकनी और जुड़ बेर अपना आजीविका को बढ़ा सकनी। और इमें जो एक और फैद एलोवेरा में हूँ या जो पतेल होनी या पतेलों में क्यों कि कुछ खास प्रकार ऊतक होनी जो पानी के अपू भितर स्टोर कर धरनी जम कर पर धरनी जैल क्यों कि कम पानी में लपना पा। मतलब ये बात है कोई चिंता करने जरूरत नहीं है कि अगर पानी नहीं होल तो ये कशी होल या बहुत ही कम पानी में हजा दो पार ले अगर थोड़ा बहुत ज्योला हो जा तो लह सको। तो यह प्रकार हम देख लूँ कि पहाड़ में अगर पानी दिक्कत छू तो यह आराम वहाँ हंस सकूँ। और ये कही जा कि जो हमार पहाड़ में जो हमार पशुधन छो पशुधन वाला मन की काम करनी तो एलोवेरा हमार जो पशु होनी जानवर होनी उन्हें लीजिए पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मदद करूँ। तो दगड़ियों देखो कई सारे काम होनी चाहे आयुर्वेदक रूप में हजो या एक प्रकार का औषधि रूप में हजो या खान पान के रूप में हजो या सौंदर्य के रूप में हजो तो हर चीज़ में जो काफ़ी काम हम को कर सकूँ। तो दगड़े हम तो यही कुल कि इस बारे में हमार काश्तकार सोची और सोच देर अपन आजीविका को बढ़ना के लिए या खेत के करने कोशिश करें।

स्वतंत्र दीवान कनवाल और शंकर उपनीति जनेश्वर में यह गीत आप लोग सुनना किया और कार्यक्रम में आगे अपने श्रोता को आज हम सुनने लग रही कि खेत बचाओ अभियान के तहत हमको जैविक खेती के फायदे हो सकें, जैविक खेत कैसे हमारे प्रकृति के लिए भी फायदेमंद हो सके, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सके, तो जैविक खेती द्वारा हम कस्तु लाभ ले सकूँ, तो यह विषय पर हम बात कर रहे थे राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र मचखल जिल अल्मोड़ा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगीदगढ़। तो आओ उन्होंने तक करी गई यह बातचीत आपको देखना। श्रोताओं, आज हम पहुंचे हैं राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण

0: केंद्र मचखाली रानीखेत के कार्यालय में और हमारी मुलाकात हो रही है केंद्र के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी से। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, फार्म जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कब ये स्थापित किया गया और क्या काम यहाँ पर होता है?
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फार्म या ये जो केंद्र है, राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र के नाम से वर्ष 2006 में का उद्घाटन हुआ था। तो ये जो सेंटर है मचखाली में, ये बेसिकली पहाड़ का एक बहुत अच्छा सा सेंटर है जो बिल्कुल मध्य हिमालयी क्षेत्र में है। और हम लोगों ने जब इस सेंटर की स्थापना करी थी, तो इस सेंटर का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ये था कि उत्तराखंड जो है, एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जो पहले से ही जैविक है, और पहले से जैविक होने के कारण बहुत सारे बाहर के लोग, बहुत सारे दिल्ली से और बहुत सारे जगह जगह से लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, लोग यहाँ आकर्षित होते हैं कि हम पहाड़ की जैविक खेती के बारे में सीखें, पहाड़ के बारे में सीखें। ये हमारा बेसिकली इसका उद्देश्य था।
0: जी
1: और वर्ष 2006 से वर्तमान तक यहाँ पर लगभग 540 प्रोग्राम और 800 से अधिक एक्सपोजर विजिट हो गए हैं। और केवल भारत ही नहीं, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक बैच यूएसए का, अभी हाल ही में एक बैच भूटान का और नेपाल का, इसी सहित सिक्किम जो कि आज भारत का पहला जैविक राज्य है, सिक्किम के लोग भी यहाँ भी वर्ष 2009, 10, 11 में लगातार प्रशिक्षण लेके चले गए हैं। मैं ये कहूँगा कि किसान ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी और विश्वविद्यालयों के छात्र, जो छात्र स्नातक और प्राय स्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी एमएससी, चाहे वो पंतनगर विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद नैनी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, चाहे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के कृषि के छात्र हों, बहुत जगह यहाँ पर लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, प्रशिक्षण के लिए आते हैं और जैविक खेती का प्रशिक्षण लेते हैं।
0: जी, अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, किसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के अलावा बाहर के लोग भी इसमें से सीख रहे हैं। क्या क्या जैविक तरह की कृषि यहाँ पर आप कर रहे हैं?
1: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। हम कहीं भी किसी जगह पे जाते हैं तो एक स्पेशल वहाँ की पहचान होती है। आप मुरादाबाद जाएंगे तो कहेंगे कि वहाँ का पीतल फेमस है, आप हरिद्वार
0: जी
1: जाएंगे तो वहाँ का गंगा जल फेमस है। उसी तरह जो उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो हमारी गडेरी हो, अरबी हो, यहाँ का आलू हो, यहाँ की विभिन्न प्रकार का
0: जी
1: झंगोरा हो,
0: जी
1: मंडुआ हो, कौणी हो, चीणा हो, जख्या हो, जीरा हो, ये जो फसलें हैं इनका उत्तराखंड में बड़ा महत्व है। और उत्तराखंड से ज़्यादा जब ये चीज़ें बाहर जाती हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो, ये बड़े शहरों में जब जाती है तो उनका एक बड़ा डिमांड रहती है। तो इसी उद्देश्य से ये जो क्षेत्र है, ये जो फार्म है, ये जो कृषि का केंद्र है, ये 15 हेक्टेयर एरिया का है, लेकिन इसमें हमने लगभग 2 हेक्टेयर एरिया में पिछले 6-7 सालों से हमने बहुत सारी रिसर्च भी की है, शोध कार्य भी किए हैं। उस शोध कार्य के अंतर्गत हमने यही कोशिश करी है कि हम यहाँ के जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको, उनमें अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकें, उनमें गुणवत्ता का कैसे, उनमें गुणवत्ता की वृद्धि कर सकें, और बिना किसी रासायनिक खाद और बिना किसी रासायनिक दवाइयों से कैसे अपने झंगोरा को, मंडुआ हुआ, चौलाई हुआ, बंद गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, टमाटर हुआ, इन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लगें ताकि हमें किसी तरह की रासायनिक खाद का प्रयोग न करना पड़े। हम लोगों को यहाँ पर जब बाहर से बह जाते हैं तो उनको झंगोरे की खीर हो गया, मंडुए की रोटी हो गई, और ये आपका गहत के डुबके हो गए, काला भटकी चुटकानी हो गई, ये सब चीज़ देते हैं। और
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं कुछ आपके इस केंद्र में हो रहे कामों के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि हमारे श्रोता ये समझ सकें कि प्रयोग के तौर पर आप किस तरह का यहाँ पर काम कर रहे हैं।
1: देखिए, हमारे पास पूरा जैविक का काम है, हमें जैविक विधि से ही खेती करनी है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उत्तराखंड में है वो है कि मिट्टी की ताकत को कैसे बढ़ाएं, और दूसरा कि जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, जो हमारे किसान जो नगदी फसल उगाते हैं, उसमें जो कीट नियंत्रण है या जो रोग नियंत्रण है जैविक तरीके से कैसे किया जाए। तो उसी के क्रम में मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर जो हमारी कंपोस्ट यानी कि खाद बनाने की जो तकनीकें हैं उनमें बहुत सुधार किया है। हमने किसानों को बोलना चाहा है कि आप अगर किसी खेत में 10 डलिया गोबर डालते हैं तो हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आपको 10 न डालना पड़े और 2 डलिया या 3 डलिया गोबर डालने ही आपकी उतनी ही ताकत 10 डलिया गोबर में चली जाएगी जितनी कि 3 डलिया गोबर में जाती है। उससे आपका जो डर्जरी है, जो महिला श्रम बोझ मुक्ति है, वो भी कम होगा और हमारे खेतों को बराबर ताकत भी पहुंचेगी। दूसरा, जो हम पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, हमने जो पहाड़ में वनस्पतियाँ हैं, इन बहुत सारी वनस्पतियों में कीटनाशक क्षमता होती है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आप बता दूं कि रामबांस एक ऐसा कीटनाशक है कि अगर आप उसको किसी भी इंसेक्ट के ऊपर, किसी भी कीट के ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो तो मर जाता है या भाग जाता है। तो इससे होता क्या है कि हम महंगी महंगी दवाइयाँ, 2-2 हज़ार रुपये लीटर, 1,000 रुपये लीटर की दवाइयाँ न डाल के, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा हानिकारक दुष्प्रभाव भी हैं हमारे बच्चों पर, हमारे पानी पर, हमारे पशुओं पर, तो हम उनको प्रयोग न करके घर की ऐसी दवाइयाँ बनाएं। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे बॉटनिकल्स यहाँ पर प्रयोग किए हैं और हम उन्हीं पे लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे

0: प्रदर्शन भी होते हैं, हमारी विभिन्न प्रकार के कंपोस्ट भी बनी हुई हैं, और बहुत सारे प्रकार के हम रोज नए नए कीटनाशक यहाँ पर किसानों के लिए इजाद करते रहते हैं,
1: जी
0: ताकि वो लो कॉस्ट यानी कि कम लागत में अपनी खेती में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कर सके।
1: जी मैं एक बहुत सरल सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर पहाड़ के गांव का कोई किसान आपके इस कार्यालय में आके, आपके इस फील्ड में आके कुछ सीखना चाहे, तो उसके लिए क्या संभावना है?
0: देखिए यहाँ पर बहुत सारे किसान आते रहते हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या होता है कि किसान जो है कृषि विभाग हुआ, उद्यान विभाग हुआ, आजीविका हुआ, या जलागम, या विभिन्न प्रकार के जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन है उनके माध्यम से भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती में इंडिविजुअल मतलब खुद अपना इंटरेस्ट रखते हैं या अपना, तो वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके किसी भी दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, किसान के लिए वैसे 3 दिन का प्रशिक्षण हम लोग देते हैं, तो वो आकर 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर हमसे ले सकता है।
1: किसान का किस तरह का यहाँ पर शेड्यूल होगा? आपने बताया कि उदाहरण के लिए आप जैविक नियंत्रण पर या जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आपने ये भी बताया कि कुछ वनस्पतियों पर आप काम कर रहे हैं, तो किसान को कैसे तय करना होगा कि क्या वो अगर नर्सरी के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराएगा, या वो अपनी जो स्थानीय फसलें हैं उनके लिए कोई जैविक तकनीक इस्तेमाल करना चाहता है तो वहाँ जाएगा? इस तरह का कोई अलग अलग शेड्यूल है या किस तरह से आप इसको करते हैं?
0: देखिए प्रशिक्षण में तो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देते
1: जी
0: हैं कि किसान शुरू कैसे करे और ख़त्म कहाँ तक ले जाए। इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि किसान पहले पंजीकृत कैसे हो। अगर वो एक
1: जी
0: जैविक किसान है, सपोज एक किसान है, तो वो पहले पंजीकृत कैसे होगा कि मैं जैविक हूँ। देखिए बहुत सारे किसान जैविक हैं, हमारे उत्तराखंड में तो वैसे भी वर्षा आधारित खेती है, तो लगभग 98% किसान पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही जैविक हैं।
1: जी
0: लेकिन एक ये है कि पहले उनको प्रक्रिया में लाना, यानी कि उनको जैविक में पंजीकृत करवाना। पंजीकरण के बाद हम उनको बताते हैं कि आपको जैविक करने का खेती करने से क्या फायदे होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी कितनी बड़ी डिमांड है। आप यहाँ पर दिल्ली में ही चले जाइए, जो मंडुआ आप यहाँ 30 रुपये 40 रुपये किलो बेचेंगे मंडुए का आटा, वही दिल्ली में आप 150 150 200 रुपये तक का बेच सकते हो, और वहाँ लोगों के पास पहुँच नहीं रहा है। तीसरा हम उनको बताते हैं प्रक्रिया की होगा कैसे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। चौथा हम बताते हैं कि जब आपने जैविक कर लिया तो अब आपका जो उत्पाद है वो कैसे प्रमाणीकरण हो, उसके लिए उनको क्या करना होगा, किसी एजेंसी से उनके लिए उनको कुछ दस्तावेज उसमें भरने होते हैं। वो दस्तावेज जब वो भर देते हैं, एक जो इंटरनल इंस्पेक्टर या निरीक्षक आता है, और उसके बाद वो चेक करता है कि आप फलां किसान जैविक है या नहीं है। जब वो उनका निरीक्षक हो जाता है, तो हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि हम उनको केवल निरीक्षक और जैविक करने से ना रहे, बल्कि उनका जो माल है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अल्मोड़ा सल्ट की है, या आप भिकियासैंण की बात करेंगे, तो यहाँ की जो लखौरी मिर्च है, लखौरी है,
1: जी
0: जड़ा है, जंजीरी, हंसराज है, बहुत पुरानी मिर्चें हैं, और इन मिर्चों का बड़ा महत्व है। पीली मिर्च है, आपका रामनगर मंडी में आप जाएंगे तो पीली मिर्च की जो वहाँ बायर हैं, खरीददार हैं, बंजारे उनको बेसिकली कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इसको इसको खोजते हैं कि हम लोगों को पीली मिर्च चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसान उगा रहा है और उसको सही मार्केट नहीं मिल पा रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो हमारा ये भी उद्देश्य रहता है, हमारे जैविक उत्पाद परिषद के साथ अभी वर्तमान में 58 खरीदार रजिस्टर्ड हैं,
1: जी
0: तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो पंजीकृत बायर हैं उनको हम किसानों से कॉन्टेक्ट कराएं, हम बीच में ना आए, बल्कि उनको किसानों के ग्रुप में ले जाए, किसानों के गाँव में ले जाएं, बेच सकें। तो मार्केटिंग और इसके अतिरिक्त सप्लाई चेन और वैल्यू एडेड, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो अल्मोड़ा जिला है, हम मंडुआ चौलाई का अच्छा प्रोडक्शन है, मिर्च का अच्छा प्रोडक्शन है, तो हम चाहते हैं इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने। अब ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले मंडुआ बिस्किट, मंडुआ की नमकीन और
1: जी
0: विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, चटनी, सब जैविक में
1: जी
0: बनाने की कोशिश करी थी कि किस तरह से लोग मंडुए को अगर नहीं खाते हैं तो उसको उसको बिस्किट के रूप में, उसको नमकीन के रूप में कैसे अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो ये भी हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अगर हमें लगता है कि हम डायरेक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम उनको उनको जो है वैल्यू एडिट करके या
1: जी जी
0: उनमें
1: जी
0: वो करके उनको मार्केट में उतारे।
1: बहुत अच्छी बात आपने हमसे कही। हमारे पास समय की थोड़ा बाध्यता है, तो जाते जाते कि जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सभी श्रोताओं से यही कहना चाह रहा हूँ कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और 40-45 साल बाद आदमी की ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उसके पास पैसा होता है, लेकिन तब तक वो अपनी हेल्थ गंवा चुका होता है।
1: जी
0: सबसे बड़ा जो पैसा है जीवन में वो आपका स्वास्थ्य है। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी उत्पादों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, आज के नहीं है, ये प्रकृति के साथ बड़े
1: जी
0: प्रोडक्ट हैं,
1: जी
0: और यहाँ के जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो आपको उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आपको ये पता चलेगा कि 40-45 साल बाद, 50 साल बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं कैसे हेल्थी हूँ, क्योंकि मैंने जैविक खाना खाया। तो मेरा उद्देश्य यही है, लोगों से, श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी जैविक खिलाइए और अपने बच्चों को भी जैविक दीजिए, पहाड़ी उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए, और उत्तराखंड को भी

0: स्वस्थ रखिए। आपने हमसे बहुत बेहतर तरह से अपने कार्यालय के बारे में बातचीत की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रोता हमारी बातचीत को सुन रहे हैं इस केंद्र पर जरूर आएंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेकर के लाभ कमाएंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
1: तो श्रोताल, आप लोग सुन रहे जैविक खेती खैर विषय पर राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र मचखल जिल अल्मोड़ा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी दगल करी गई यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।

श्रोता यो थिए बिमला बोरा न डगली जनस्वरमा यो गीत आप लोग सुनला छ। एकै बेगर आजक ग्राम जगत कार्यक्रम यतिकै सम्पन्न भोट फिर भेट रहल आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी आप ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुआ चाहते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठिक कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण करो। किसानों थे प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के अपरूनक आह्वान करो। केंद्रीय कृषि मंत्री जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और माटक खराब स्वास्थ्य जस चुनौतियों के समाधान लीजिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दे। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बैठे 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करेगी। और नशा खिलाफ जन जागरण अभियान चलूनक लीजिए हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता भयो। और अब समाचार विस्तारल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र में नई पहचान दिलूं और किसानों की आय बढ़ूनक लीजी केंद्र सरकार नई महत्वपूर्ण कदम उठूण है। रुद्रपुर में केंद्रीय योजनाओं के लोकार्पण और खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के संबोधित कर बेर उनल किसानों थे आधुनिक तकनीक अपनोनक दगार प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के बढ़ावा देनक आह्वान करो। केंद्रीय मंत्री को कि किसानों के गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त पौध उपलब्ध करुणक लीजिए मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपयों की लागत क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करी जाली है। अलावा अल्माड़क चौबटिया में भारत नीदरलैंडक सहयोगल 15 करोड़ रुपयों की लागत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी जाली। केंद्रीय मंत्री किसानों थे रासायनिक खाद और कीटनाशकों को संतुलित उपयोग करण और माटक खराब स्वास्थ्य के सुरक्षित रखने पर जोर दे।
1: अभियान है खेत बचाओ अभियान। मेरे भाई और बहनों, खाद का प्रयोग करने में मना करने नहीं आया। संतुलित प्रयोग से जमीन को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक साल एक बोरी, अगले साल डेढ़ बोरी, फिर उसके बाद दो बोरी, उसके बाद ढाई बोरी, उसके बाद तीन बोरी। आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन, ये धरती माता लगातार खराब हो रही है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं आज हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो।
0: श्री चौहान को कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों थे फसलों की सुरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपयों की लागत है घेर बाड़ योजना ले शुरू करी गए। यह के लिए बची 65 करोड़ रुपयों की धनराशि ले उपलब्ध कराई जाली। जेल किसानों खेती प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सकल। केंद्रीय मंत्री को कि जलवायु परिवर्तन खेती के लिए ठूल चुनौती बढ़ते जाड़ो। उनल किसानों थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेनक अपील करी।

0: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और माटक बिगड़ता स्वास्थ्य जस चुनौतियों समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दियो। उनल को की विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूर होल जब कृषि विकसित होली और किसान समृद्ध होल। उ पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित द्वि दिनक पूर्व छात्र संबोधन के सम्मिलित करना छी। यू मौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पूर्व छात्रों थे कृषि अनुसंधान नवाचार स्टार्टअप और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देनक आह्वान करो। उनल को की पहाड़क खेती नान जोत जंगली जानवरों थे फसल के हुड़वल नुकसान पलायन और जलवायु परिवर्तन जस चुनौतियों का सामना करने जनर समाधान अनुसंधान और नवाचार ले संभव छू।
1: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
0: कार्यक्रम दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों ख्यालों को निरीक्षण करो और विद्यार्थियों से संवाद करो व धानक रुपाई मेले भाग ले।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमार सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: उत्तराखंड बठे राज्य गठनक बाद पहली बार 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गयो। मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा देहरादून में प्रेस वार्ता में बताया कि पिथौरगढ़ जिलक धारचूला और मुंशारी क्षेत्रक 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों आज सरकारक सहयोगल नेपाल के यो माछ निर्यात करी। प्रस्तुत एक रिपोर्ट।
3: मत्स्य विकास मंत्री बता कि माछों के कोल्ड चेनक माध्यमल गुजरातक वेरावल भेजी गई जहाँ प्रसंस्करणक बाद 23 जून के नेपालक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गई। यह माँ 33 मत्स्य पालकों के लगभग 23,50,000 रुपये आय मिले। यह निर्यात के प्रोत्साहित करणक लीजी मत्स्य विभाग हार्वेस्टिंग पैकेजिंग और परिवहनक लीजी 5,40,000 रुपये सहायता उपलब्ध कराई।
4: पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोज़गार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और अच्छा रेट मिल रहा है तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे।
3: मत्स्य विकास मंत्री बता कि अब यूरोप मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में ले निर्यातक संभावनाओं में ले काम करी जाने। आने वाले दिनों में लगभग 30 टन माछक निर्यातक तैयारी करी जाने। उन्होंने बता कि साल 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिसक दगड़ है समझौताल अब तक 45.10 लाख मीट्रिक टन ट्राउट माछक पूर्ति करी हाली जय कीमत 2,10,00,000 रुपए छिन। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी मी गीता भंडारी।
0: विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवसक मौके पर हरिद्वार में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताहक समापन भयो। यो बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अखिल विश्व गायत्री परिवारक बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी गया। यह भीतर द्वीय संस्थाएं देश भर में नशा खिलाफ जन जागरण अभियान चलाबेर मनखियों के जागरूक कराल। यो मौक पर शांति कुंज बठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाने निकाली गए नशा मुक्त रैली 2,000 स्वयं सेवकों युवाओं श्रेणियों और विद्यार्थियों भाग लीबे नशा मुक्त भारत तक संकल्प ले। कार्यक्रम के संबोधित करबेर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरे इंद्र कुमार बताए कि नशा केवल मन की ही न है बल्कि पूर परिवार और समाज के लिए प्रभावित करनन। उनल को कि जब देशक युवा नशे से दूर होल तबे भारत अपूर्ण विकसित राष्ट्रक

0: सकें पान और मजबूती कदम बढ़ाल।
1: और आज जो अभियान यहाँ पर इसका जो समापन हुआ है, ये वास्तव में समापन नहीं है बल्कि आदरणीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, सशक्त होगा, तो वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त करने में अपना योगदान देगा।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनक आगमन की स्थितियां अनुकूल है गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मानसिक राज्यों को कुछ जगहों में भूचाल और एक दगड़ ही पहाड़ी जिलक जगहों में कुछ घोड़ा मोड़ा चाल चमकण तेज देव बयाव के लीबेर येल्लो चेतावनी जारी करी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादूनल 30 जून जाने पहाड़ी जिलों में कह तेज घोड़ा मोड़ा चाल चमकणक दगड़ तेज है तेज दियो चलन और 30 है 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तारल तेज झोंकदार बयाव हो चलनक अंदाज ले जता रखो। 30 जून के पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिले में कह तेज बर्फ होनक अंदाज छू और अगले 3-4 दिनों जाने अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की कोई संभावना नहा, लेकिन ये एक बात तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सके। मौसम विभाग खराब मौसम के लेबेर चंट चेतावनी अपील करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्रपुर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लोकार्पण करो और किसानों प्राकृतिक खेती और पारंपरिक फसलों के अपनून पर जोर दियो। केंद्रीय कृषि मंत्री जलवायु परिवर्तन को घटतू पानी स्तर और माटक बिगड़ता स्वास्थ्य जस चुनौतियों के समाधान देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दे। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड बटे 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट माछक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करी गयो। और नशा खिलाफ जन जागरण अभियान चलोनक लीजिए हरिद्वार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता भी हो। ये कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक खत्म हो। नमस्कार।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मुड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे आशा भोसले और कुमार सानू बलमा फिल्मी, गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गद्दार फिल्म से, आवाजें हैं कुमार सानू, पाली ब्रह्म भट्ट और सपना मुखर्जी की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के गाए दलाल फिल्म के गीत से। गीत के बोल अनजान की, ध्वनि बप्पी लहरी की।

0: कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के गाए दलाल फिल्म के संगीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की जद में युवा कैसे करे पहचान व नशा मुक्ति का समाधान विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दुर्गा पंत से भेंट वार्ता। आपके साथ भेंट करता है संजय जोशी।
1: श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में मादक पदार्थों का उपयोग और उसकी अवैध तस्करी एक आम बात होती जा रही है। आए दिन हम समाचारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि इस तरह के तस्करी करते हुए लोग पकड़े जाते हैं और हमारे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, ऐसे विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी भी मादक पदार्थों की जद में आते जा रहे हैं। तो इन मादक पदार्थों का क्या दुष्प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, इन सब चीज़ों में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुश्री दुर्गा पंत को, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और साथ में एक रिलैक्सेशन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो दुर्गा, आपका हमारे स्टूडियो स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: दुर्गा, बात यहीं से शुरू करते हैं कि मादक पदार्थों का उपयोग यानी ड्रग अब्यूज़, तो ड्रग अब्यूज़ को हम क्या समझें, इनका उपयोग को क्या जाने?
2: ड्रग अब्यूज़ का अर्थ है किसी नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, निकोटिन, टोबैको आदि का उपयोग जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक जीवन को नुकसान पहुँचाए। शुरुआत में व्यक्ति इसे शौक, जिज्ञासा या यूं कहें कि तनाव कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका मस्तिष्क, जो ब्रेन है, उस पदार्थ पर निर्भर होने लगता है। तब व्यक्ति इसे चाहकर भी नहीं छोड़ पाता और ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का भी रूप ले सकता है।
1: तो शुरुआत होती है कि पहले शौक के रूप में लेते हैं जी। लेकिन शौक कब होता है? जब ऐसे तो किसी बच्चे को जब तक उसके सामने कोई चीज़ परोसी नहीं जाएगी वो शायद उसके स्वाद, उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएगा।
2: जी बिल्कुल। लोग ड्रग अब्यूज़ करते ही क्यों हैं? कोई भी व्यक्ति एक दिन में नशे के आदि नहीं बनते। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल, सोशल और बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, विशेषकर किशोरावस्था में बच्चे नई चीज आजमाने के लिए उत्सुक बहुत रहते हैं। दूसरा है हमारा पीयर प्रेशर, दोस्तों के दबाव में आकर कोई युवा पहली बार नशा करते हैं, एक बार ट्राई कर लो जैसे स्टेटमेंट, जैसी शुरुआत जो होती है वो एक ड्रग यूज का कारण बन जाती है। स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, जो बहुत आजकल युवाओं में हम देख रहे हैं, जब व्यक्ति तनाव, असफलता, रिश्तों की समस्याओं या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है तो वो अपना तनाव कम करने के लिए नशा लेना शुरू करता है कि मेरा मन शांत रहेगा। डिप्रेशन एंड एन्जाइटी, मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक दर्द को कम करने के लिए भी वह नशा करने का ही रास्ता चुनता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा शांत कर देते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, तो लोगों को इसमें दिलचस्पी ज़्यादा होती है।
1: जी, एक बात तो ये आई कि जो बच्चों की बात यहाँ शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि बड़ी सोसाइटीज़ में जो है रेव पार्टी का आयोजन किया जाता है, वहाँ भी ड्रग्स का प्रचलन बहुत होता है, जबकि वहाँ पर लोग, मैं कहूँगा कि प्रतिष्ठित लोग हुए और समाज में स्थापित लोग भी होते हैं, तो वहाँ उनके बीच में इस तरह का जो ये ड्रग का प्रचलन होता है वो क्यों?
2: उसमें फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप उस फैमिली और उस वातावरण से आ रहे हैं जहाँ घरों में पहले से ही इन सब चीज़ों का सेवन करा जाता है, तो आगे चलकर बच्चे भी इसी एरिया में जाते हैं। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है ट्रॉमा। रिसर्च में बताया गया है कि बच्चों को बचपन में ट्रॉमा, अब्यूज़, नेग्लेक्ट या घरेलू हिंसा जिन लोगों ने सही हुई है, वो लोग सबसे ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ के तरफ जाते हैं। एक रिसर्च भी करी गई थी 2023 में जू एट ऑल रिसर्चर के नाम से, और ये बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस हुई है जिसमें 102 स्टडीज़ करी गई हैं और लगभग

0: 9 लाख प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है, और विश्लेषण में ये पाया गया है कि जो बचपन में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जैसे अब्यूज, नेग्लेक्ट या फैमिली डिसफंक्शन का अनुभव किया है, उनमें स्मोकिंग, एल्कोहल मिसयूज, कैनबीज यूज का जोखिम उल्लेखनीय रूप से किया गया है। एंड श्रोतकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा सब्सटेंस यूज के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
1: घर में हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, आजकल हर बच्चे को एक अपना अलग से कमरा होता है, लेकिन वो उस कमरे में बैठ के क्या करता है, देर रात तक स्टडी करते हैं। अब ऐसा भी पाया गया बाद में कि कुछ बच्चे पढ़ने के नाम पर नशे के आदि हो गए, तो घर में अगर कोई बच्चा इस तरह का है तो उसको माँ बाप कैसे उस पर कैसे पता करेंगे कि यार मेरा बच्चा सही रास्ते पर जा रहा नहीं जा रहा।
0: जो इंटरनेट यूज़ आजकल हो गया है रील स्क्रॉल करने में, पेरेंट्स को उसमें पेरेंट कंट्रोल जो रहता है फीचर वो यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, और आप जिन भी ऐप्स को कंट्रोल में रखेंगे वो आपका बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। पहली ये बात हो गई। दूसरी ये है कि बच्चे का एक यूजुअल बिहेवियर होता है अपने घर में, लेकिन जब कोई भी नई चीज़ होती है या तो वो अपने बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करता है तब भी बच्चे में कोई परिवर्तन आता है, और नेगेटिवली जब उसका बिहेवियर चेंज होता है तब भी पेरेंट्स को बहुत ही कंसर्न रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनके बिहेवियर को लेकर कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बात कर रहा है, अगर वो मोबाइल देख रहा है तो उसमें वो क्या यूज़ कर रहा है। तो अगर उसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है, आंखें लाल हो रही हैं, आंखें सूज रही हैं, बातें घर पे अब नहीं बताई जा रही है जैसे पहले होती थी, और बहाने बहुत बनाए जा रहे हैं, तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग।
1: यानी कि ये फिजिकल और जो बिहेवियरल वरिंग साइंस वो देगा वहाँ पर,
0: बिल्कुल
1: इसको
0: बिल्कुल।
1: इसको माँ बाप को ही देखना पड़ेगा इस चीज़ को,
0: बिल्कुल।
1: हॉस्पिटल या डॉक्टर तक जाने की बात तो बहुत
0: दूर की बात है। बिल्कुल
1: बात ये आती है कि कुछ बच्चे हम देखते हैं कि आजकल पढ़ाई की तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं, तो बाद में चलता है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ के आदि हो गए, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन किसी वजह से बच्चे जो है जो हम कहते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए या डिप्रेशन में बच्चे हैं, तो ये जो इस तरह के सिम्टम्स वो देते हैं घर में बैठ कर के, तो अब दो तरह के हो गए, एक तो मेंटल डिसऑर्डर है और दूसरा सब्सटेंस अब्यूज़ का है, तो उस चीज़ को कैसे घर में बैठ के अंदाज लगाएं, पहला स्टेप क्या रहेगा?
0: पहली बात तो ये कि ड्रग अब्यूज़ और मेंटल हेल्थ एक दो तरफा रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शन रिलेशनशिप। पहला तरफा ये है कि व्यक्ति पहले डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान होते हैं, तब वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाते हैं या ड्रग यूज़ करने की तरफ जाते हैं। दूसरा तरीका है व्यक्ति पहले नशा शुरू करते हैं और बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और मूड डिसऑर्डर्स जैसी चीज़ें विकसित होने लगती। होता क्या है, लगातार नशे करने पर हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बात करें डोपामिन की, तो ये एक प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड, खुशी, प्लेजर देता है। ड्रग्स जो होता है वो हमारे दिमाग में असामान्य रूप से डोपामिन को बढ़ा देता है, जिससे बच्चों को अत्यंत खुशी मिलती है, और उसके बाद में उनको बार बार वो आदि हो जाते हैं कि हमें खुशी चाहिए तो हम ये वाला ड्रग करेंगे,
1: क्रेविंग
0: होने लगती है। तो क्रेविंग जब एक्सेस होती है तो सर मल्टीपल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा या तो बच्चा पहले ही डिसऑर्डर उसको बच्चे को कुछ है तब वो ड्रग यूज़ कर रहा है, दूसरा ये कि पहले उसने ड्रग यूज़ करा फिर उसको वो डिसऑर्डर्स होने लग गए। दूसरा सेरोटोनिन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक हमारा मूड रेगुलेशन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सेरोटोनिन हमारे मूड, स्लीप, एपेटाइट, हमारा भूख और इमोशनल वेलबींग को भी प्रभावित करता है, और जब सेरोटोनिन का संतुलन बिगड़ जाता है तब व्यक्ति में उदासी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, और जब ये सीवियर हो जाते हैं तो फिर और डिसऑर्डर से ये एसोसिएटेड हो जाते हैं। लास्ट अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो गाबा है, जो कि मस्तिष्क का मुख्य कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, मस्तिष्क को शांत रखता है। ड्रग्स का सेवन करने से या फिर अत्यधिक सेवन करने से इसका संतुलन भी बिगड़ जाता है, और फिर बच्चों में जो भी इसका सेवन कर रहे हैं उनमें बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ये सारे फैक्टर्स एसोसिएट हो जाते हैं, एंड परिणाम स्वरूप हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, एग्रेशन तक देखने को मिल सकते हैं।
1: हमारे सामने दो तरह के बच्चे हो गए, एक तो मेंटल डिसऑर्डर वाले और एक ड्रग एब्यूज वाले। अब जो ड्रग एब्यूज पाया जाता है तो उसका इलाज की बात आती है, वो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी?
0: मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो

0: मैं दवाई के अलावा जो थेरेपीज दी जाती है मैं उनके बारे में आपको बात
1: करना चाहूंगी। इलाज से ज्यादा मनोवैज्ञानिक इलाज ज्यादा जरूरी है ऐसा माना जाता है जो ड्रग अब्यूज होते हैं।
0: जी दवाइयां तो ये है हम एक टाइम तक लेंगे और एक्सेस यूज दवाइयों का भी हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं इन फ्यूचर। एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप ड्रग अब्यूज का अगर ट्रीटमेंट देखें तो पहला होता है हमारा साइको एजुकेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्टेप होती है बिफोर गिविंग एनी थेरेपी किसी भी पेशेंट को। व्यक्ति और उसके परिवार को ये समझाना कि नशा मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को कैसे प्रभावित करता है तथा रिकवरी की प्रक्रिया क्या होगी, क्या थेरेपीज आपके पेशेंट में लगाई जाएंगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है जिसमें व्यक्ति के उन नकारात्मक विचारों और बिहेवियर की पहचान की जाती है जो नशे को बढ़ावा देते हैं और उनकी जगह स्वस्थ सोच एवं बिहेवियर विकसित करा जाता है।
1: अपनी नकारात्मक सोच आती है तो किस तरह की सोच होती है बिहेवियर उसमें?
0: सिर्फ नेगेटिवली थिंक करना। अगर आप एक्सेस सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं।
1: अच्छा।
0: आप नेगेटिव भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। एग्रेशन इज अ नेगेटिव फैक्टर। आप गुस्सा कर रहे हैं कहीं पर भी चीखना चिल्लाना तो ये जो हमारी नकारात्मक सोच हो रही है इसको पॉजिटिवली 360 डिग्री में CBT रिफ्रेम करती है। तीसरा आता है रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रेनिंग। व्यक्ति को उन परिस्थितियों की पहचान करवाता है और सिखाया जाता है जो दोबारा नशे की ओर ले जा सकती है और उनसे कैसे हम बाहर आ सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजीज को बताया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी एक होती है इसमें ग्रुप थेरेपी जिसमें समान समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं कम्युनिटी है कि स्मोकर्स हैं तो उनकी एक कम्युनिटी बना दी गई है तो उसमें लोग मिलते हैं अपने अनुभव अपने संघर्ष और अपनी रिकवरी की जर्नी को शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो पेशेंट्स हैं, जिससे क्या होता है जो भी पीड़ित इंसान है उसे उम्मीद मिलती है होप मिलती है जिसको हम कहते हैं बिलीव होता है कि ठीक है अब मैं इस परेशानी में हूँ लेकिन आगे जाकर मैं इससे निकल भी सकती हूँ।
1: जैसे हम जानते हैं कि सरकार द्वारा कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाते हैं पुनर्वास केंद्र भी होते हैं इनके तो वहाँ पर उनका जब पुनर्वास किया जा रहा होता है या उनको रखा जाता है इसमें जो हमारे नशा लेते हैं लोग तो उनको नशा छुड़वाने के लिए जो प्रक्रिया होती है तो उसमें एक डॉक्टरी इलाज तो कुछ दवाइयों के साथ चलेगा लेकिन वहीं पर मनोवैज्ञानिक का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
0: एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैं एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ड्रग एडिक्शन को केवल एक बुरी आदत या चरित्र की कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए हमें। अक्सर इसके पीछे तनाव ट्रॉमा डिप्रेशन एंजाइटी पीयर प्रेशर पारिवारिक समस्याएं जैसे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण होते हैं। अगर ये चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, हमें उस रूट कॉज तक जाना चाहिए।
1: अच्छा।
0: मनोवैज्ञानिक का काम यही होता है कि इंसान ने कोई अगर बुरी आदत ली है या किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ला रहे हैं हम उसको पकड़ें हम उसको फिगर आउट करें एंड फिर हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सो मनोवैज्ञानिक का एक बहुत बड़ा रोल इसमें होता है।
1: लेकिन अब कोई आदमी रेगुलर ड्रग्स ले रहा है नशा ले रहा है जब वो छोड़ता है तो एकदम तो वो छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे।
0: बिल्कुल
1: तो वो विड्रॉल सिम्टम्स उसको और परेशानी बढ़ा सकते हैं उस वक्त?
0: बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इरिटेबिलिटी होती है घबराहट होती है बेचैनी होती है वोमिटिंग होती है इवन इतना गुस्सा होता है कि आप घर में तोड़फोड़ भी वो करने लग इसी उसमें हमें दवाई का प्रयोग करना पड़ता है कि हम उनके मन को शांत करें और उसके बाद फिर हम थेरेपी के थ्रू उनकी मदद करते हैं। लेकिन यही है कि डिपेंड करता है कि किसी भी इंसान का या फिर पीड़ित की इंटेंसिटी कितनी हाई है उस सब्सटेंस यूज़ को लेने की, उस पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है। लेकिन इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है घबराहट बेचैनी ये मेन फैक्टर्स होते हैं जब एकदम से ड्रग्स उनसे छुड़वाई जाती
1: है। क्या ये कह सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अपने बच्चे पर वो नज़र रखें शुरुआत से?
0: बिल्कुल सर, पेरेंट्स का भी रोल होता है साथ ही साथ विद्यालय का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे परिवार की अगर हम बात करें तो बच्चे से खुलकर बात करनी चाहिए। हमें बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जहां वो बिना डरे अपनी समस्याएं तनाव अपनी भावनाओं को रख सके। गलती करी है तब भी बताएं, कुछ अच्छा हुआ है तब भी वो शेयर करें। विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सर बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और पीयर प्रेशर से कैसे बाहर निकाला जाता है इन सब में अवेयरनेस प्रोग्राम काउंसलिंग सेशंस रखने चाहिए। अगर हम समाज की बात करें तो नशे को स्टेटस सिंबल के रूप में बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में ये चीज़ काफ़ी फैशनेबल और आकर्षण उसमें दिखाई जा रही है जो कि सही नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का सेवन करना कितना हानिकारक हो सकता है।

0: हमारे हेल्थ के लिए। अगर हम लास्ट युवा की बात करें तो हेल्थ कोपिंग स्किल्स को विकसित करना हर युवा को आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए, क्योंकि उसमें आप, अगर आपको तनाव है, आप असफल हो रहे हैं, आप भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो आपको गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आप इन सब चीज़ों से कोप कर सकते हैं बिना नशे के डायरेक्शन की तरफ जाकर।
1: अब एक चीज और भी इम्पोर्टेंट आती है कि हमारे युवा अपना हेल्थ बनाने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन जिम में भी सब्सटेंस अब्यूज़ के बात सामने आई है, और साथ में कॉलेजेस की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने विद्यालय की बात की, मैं कहता हूँ हायर एजुकेशन में भी,
0: बिल्कुल,
1: तो वहाँ पर भी एक इस तरह का सेशन बच्चों के साथ रेगुलर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए।
0: काउंसलिंग सेशन हर एक स्टेजेस में होने चाहिए, जब भी बच्चे की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड आता है स्पेशली तब, ताकि वो किसी गलत डायरेक्शन में ना जा सके। और अगर मैंने विद्यालय की पहले बात इसीलिए करी कि सर जो ये एज है 15 से 25 साल, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे को एक कच्चा घड़ा होता है जिसे मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन 25 के बाद वो एक पक्का घड़ा बन जाता है। तो तब तक अगर हम पहले से इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करें और सही डायरेक्शन दें और पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रखें, तो ये एरिया में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: तो जो इस तरह की अवैध तस्करी, उसको रोकने के लिए पुलिस तो हम देखते हैं कि कार्यरत रहती है, लगी रहती है, पकड़ती भी रहती है, पकड़धाड़ करती रहती है, लेकिन असली एक रोल समाज में जो हमने प्ले करना है उसमें मैं आपकी बातों के बोलूँ, आप यही कहता है कि पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है, खुद की
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को भी एथिकली इनरिच बनना चाहिए कि हमें अपने एथिक्स, अपने नॉर्म्स को नहीं भूलना चाहिए, और किसी भी चीज़ का एक्सेसिव सेवन करना तो सर हानिकारक ही होता है अल्टीमेटली।
1: जी, तो एक मनोवैज्ञानिक होने नाते आप हमारे श्रोताओं से, हमारे छात्रों से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी सबसे मादक पदार्थों के दुरुपयोग को लेकर के?
0: हर एडिक्शन के पीछे एक कहानी है, यदि हम उस कहानी को समझ लें तो उपचार के रास्ते आसान हो जाते हैं। मेरा युवाओं से यही कहना है कि अभी तक की अगर आपने अपने पेरेंट्स से कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करी है, पेरेंट्स ही, आपके सिस्टर्स, ब्रदर, इन सब से, तो आप प्लीज़ इसमें शेयर करिए। अपने इमोशंस को बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते जाएंगे वो अंदर दबते चला जाएगा, और कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा दब रही है तो वो बाउंस बैक बहुत बुरी तरीके से करती है। तो मेरा ये कहना है कि मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप डर रहे हो किसी चीज़ से, तो उसका सल्यूशन सही रास्ते पर जाकर भी हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस यूज़ ही बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यही हमारा एक सोल्यूशन है कि हमारे मन को शांत करेगा। अगर हमें हमारे मन को शांत करना है तो हम रिलैक्सेशन थेरेपीज भी ले सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग और 3 गुड थिंग्स विच हैपेंड विथ यू। अपने आप को पॉजिटिवली हमें सराउंड करना चाहिए। और मेरा सबसे, मैं बार बार ये चीज़ बहुत रिपीट कर रही हूँ कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से हर एक चीज़ शेयर करिए। अभी तक भी नहीं करिए, कुछ गलतियाँ भी हो गई हैं, पहले सॉरी बोलिए, उनके आगे अपनी बात को रखिए, सो दैट बाद में आपको कोई गिल्ट, रिग्रेट, ग्रजेस ना रहें, जिस वजह से आप इस डायरेक्शन में ना जाएं।
1: तो आप क्योंकि एक रिलैक्सेशन थेरेपिस्ट भी हैं, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को बता दें कि कैसे बच्चे भी रिलैक्स रह सकते हैं और सबसे अभी उसकी तरफ ना जाए हैं। इस तरह कोई तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, तो अपने वो कैसे निकालें, क्या कौन कौन से स्टेप उनको अपने को रिलैक्स करने में जरूरत पड़ती है?
0: एक एक्सरसाइज होती है ट्रैफिक सिग्नल एक्सरसाइज, जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स होती है। तो रेड सिग्निफाई करती है कि अब हमें क्या चीज़ रोकनी है हमारे अंदर, और येलो होती है कि क्या अब हमें चेंज करना है। ये तो हमने रोक दी, एक बुरी आदत हमने रोक दी है, अब चेंजेस हमें क्या लेने हैं। और जो थर्ड कलर होता है ग्रीन, वो होता है गो, कि अब हम अपने एक्शन, जो हमने प्लान करा है उसको एक्शन में कैसे बदलें। दूसरा होता है डम जर्नलिंग। ठीक है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अपने तक ही बातें रखते हैं, तो आप जर्नलिंग करना ज़रूर शुरू करिए। स्टार्ट करिए अपनी प्रॉब्लम से, लेकिन एंड करिए एक पॉजिटिव कोट से, एक पॉजिटिव होप से, क्योंकि जब हम लिखते हैं कॉपी में तो हमें सोल्यूशन लिखते लिखते उस चीज़ का मिलने लगता है। तो डम जर्नलिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज एंड 1% इम्प्रूवमेंट रूल। अभी तक भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आज से आप शुरू करिए। सिर्फ 5 मिनट खुद के लिए दीजिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा रिविजन करना है, 5 मिनट पहले अपने अलार्म से उठना है। ये 1% इम्प्रूवमेंट रूल होता है, जो सिर्फ 5 मिनट एक इंसान के और किसी व्यक्ति के मांगता है। एंड लास्ट है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये आप कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले अपने को रिलैक्स करना है, फिर आपको ब्रीथ करना है, फिर होल्ड करना है, एंड देन फिर एक्सहेल करना है।

0: बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि 3 to 4 minutes अगर आप करें तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाए।
1: तो दुर्गा जी, आपने हमारे श्रोताओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से जो कि हो रही है, जिस पर रोकथाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उससे बचा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी। आपको जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम सभी जानते हैं
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की जद में युवा कैसे करे पहचान व नशा मुक्ति का समाधान विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दुर्गा पंत से भेंटवार्ता। आपके साथ भेंटकर्ता थे संजय जोशी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सप्रत।

अदनान सामी के गए इसी गीत के साथ आवाज का सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आपको छिपल अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से डिले होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। फीफा फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जूनियर वर्ल्ड नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत 7 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ शीर्ष पर। और ABC पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 183 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। आयरलैंड 9 विकेट पर 182 रन बनाए। लॉर्कन टकर ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और इस समय अभिषेक शर्मा 49 और तिलक वर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को साथ लेकर चलने की बात कही।
1: Just want to say, let's try and build a solid culture going forward. It's my first opportunity as a captain for the Indian team, and definitely an honor and privilege, as great respect as well, to be leading the country. Going forward, I just want to build a culture where all of us are protecting, supporting each other through thick and thin, and more importantly, when we are out here playing the match, have fun as much as possible. It's a great opportunity, and this is a family. Let's play like lions and approach the game, each and every game, like we are going to go and win it and play to the best of our ability. That's it, nothing more. But have an atmosphere
0: बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत हासिल की। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं हमारे सहयोगी सर फिरोजी की ये रिपोर्ट।
2: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत निराशाजनक रही। बांग्लादेश ने महज 8 रन पर दिलारा अख्तर का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शोभना मोस्तरी ने जुएरिया फिरदौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश के लिए जुएरिया फिरदौस ने सर्वाधिक 33 और निगार ने 32 रन का अहम योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए। रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 19 गेंद शेष रहते 137 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्मृति मांधना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। मांधना 8 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटी। इसके बाद शेफाली वर्मा ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़कर जीत की बुनियाद रख दी। शेफाली 34 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 53 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद तेजी से विकेट गिरे और टीम ने 98 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। रॉड्रिक्स 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने टीम को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से ऋतु मोनी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद भारतीय गेंदबाज श्री चरणी ने अपने विचार साझा किए।
3: I'm just trying to bowl for my strength and just following my routines and ticking every box every day. Just trying to be more consistent.
2: सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक, फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। आइए सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता के ग्रुप ई के मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में लेरॉय साने के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए इक्वाडोर को 2-1 की बढ़त दिला दी और मुकाबले को जीत लिया। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और पराग्वे के बीच खेला गया मुकाबला बिना किसी गोल के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस नतीजे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट स्टेज में 4 जुलाई को डलास में ग्रुप जी की उपविजेता से सामना होगा। वहीं पराग्वे ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहा। ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में तुर्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान अमेरिका को 3-2 से हराया। अमेरिका ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। मैच के 3rd मिनट में ऑस्टन ट्रस्टी ने सेबेस्टियन बरहाल्टर के कॉर्नर पर शानदार गोल कर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिलाई। 0-1 से पिछड़ने के बाद तुर्की ने भी जबरदस्त वापसी की। अर्दा गुलर ने बारिस यिलमाज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गोल दाग कर स्कोर 1-1 कर दिया। पहले हाफ में 30 मिनट के खेल के बाद तुर्की ने दूसरा गोल कर मैच में 2-1 से बढ़त बना ली। 48वें मिनट में सेबेस्टियन बरहाल्टर के गोल के साथ स्कोर 2-2 पर हो गया। मुकाबला जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम के 8वें मिनट में कान अहान ने निर्णायक गोल करते हुए तुर्की की यादगार जीत पर मोहर लगा दी। जापान और स्वीडन के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। हालांकि डलास स्टेडियम में इस नतीजे के बावजूद जापान और स्वीडन की टीमों ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। दूसरे हाफ के 56वें मिनट में रित्सु दुआन के बेहतरीन थ्रू पास पर डाइजेन माइडा ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डालकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि स्वीडन ने जापान की लीड को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 62वें मिनट में एंथनी एलंगा ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ही खत्म हुआ। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनिशिया को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप एफ में पहले स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है।

0: नीदरलैंड्स ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच के तीसरे ही मिनट में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद मुकाबले के सातवें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने टीम की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ट्यूनिशिया ने गोल करते हुए मैच में वापसी की। हैनिबल मेजबरी के कॉर्नर पर हेजम मस्तूरी ने बेहतरीन हेडर के साथ स्कोर को 2-1 कर दिया, मगर नीदरलैंड्स ने मैच का तीसरा गोल दागते हुए एक बार फिर अपनी बढ़त को बढ़ा लिया। जॉन पॉल वैन हेके ने मैच के 62वें मिनट में नीदरलैंड्स की ओर से तीसरा गोल करते हुए टीम को 3-1 से जीत दिलाई।
1: Injured player behind. It continues through Dumfries and Thomann. The Dutch are flying into the knockout stage. Top of Group F.
0: Group E के मुकाबले में Cote d'Ivoire ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुरासाओ को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही Cote d'Ivoire ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। मैच के सातवें मिनट में निकोलस पेपे ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मुकाबले के 64वें मिनट में टीम की बढ़त को पेपे ने 2 गुना कर दिया। पेपे द्वारा किए गए दूसरे गोल से Cote d'Ivoire की जीत तय हो गई। विशाल शर्मा स्पोर्ट्स के।
2: पर अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एक रिपोर्ट।
3: यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व नंबर 6 और पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चौतियन चेन को सीधे गेम में 21-17, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जिया को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग भी अंतिम 8 में पहुंच गईं। पांचवी वरीयता प्राप्त तन्वी ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को 21-12, 21-19 से हराया। रक्षिता ने तुंग की हमवतन चेन सुयू को 21-4, 21-19 से मात दी। जबकि छठी वरीयता प्राप्त देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हेंग को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे के लियो झाउफू से, वहीं रौनक चौहान का मुकाबला इसराइल के एम जिल्बरमैन से होगा। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा का मुकाबला डेनमार्क की क्रिस्टोफर सेन से और देविका सिहाग का सामना जापान की आर गुंजी तथा रक्षिता श्री और कनाडा की आर चान आमने सामने होंगे। प्राची वाजपेयी, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात एथलेटिक्स पर। स्टार स्प्रिंटर्स अनिमेश कुजूर, उन्नति बोलांडर सहित अन्य एथलीटों ने 65वीं नेशनल सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अनिमेश और उन्नति ने ट्रैक पर जहां क्वालिफाइंग मार्क पार किया, वहीं सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सिंधुश्री के साथ बरानिका फ्लैंगोवन भी महिलाओं की पोल वॉल्ट में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करके एशियन गेम्स के लिए जगह बनाई। उन्होंने 4.20 मीटर की दूरी तय करके 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बाद में 200 मीटर फाइनल में कुजूर ने 20.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की 200 मीटर रेस में उन्नति बोलांडा ने एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। हरिता ने महिलाओं की 200 मीटर रेस और तेजस सिरसे ने बाधा दौड़ में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के डेकैथलॉन में केरल के तौफीक एन ने 7,276 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहिते ने रजत पदक जीता। दोनों ने कांटे की टक्कर वाले फिनिश में 7,250 अंक का एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क पार किया। महिलाओं की शॉटपुट में हरियाणा की मनप्रीत कौर और दिल्ली की सृष्टि विग ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पार किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: पर अब बात निशानेबाजी पर। जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। और अब बात वॉलीबॉल पर। एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और चलते चलते बात हॉकी पर भी। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
6: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
5: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
6: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
5: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड

0: कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग स्यू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे

से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को हीर रांझा फिल्म में। गीत लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, हिमालय की गोद में फिल्म से आवाज़ मुकेश की।

कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं जयदेव के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ गीत, जिसके रचनाकार हैं साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम है हम दोनों।

दोस्तों, हमारा भी इरादा आपको इस वक्त छोड़कर जाने का करता ही नहीं है, इसलिए केवल इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम

हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की पसंद पर बना कार्यक्रम आपके अनुरोध पर लेकर हम हाजिर हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। इससे पहले कि हम आपके फरमाइशी नगमों का सिलसिला शुरू करें, दोस्तों मन कर रहा है कि इस शेर के साथ आपसे दो बात की जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से ही चलना जरा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से ही चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। सच में दोस्तों, हम जब भी कहीं पर थोड़ा सा भी डगमगाते हैं ना, तो सबसे पहले जिनका एहसास, जिनका सहारा हमें चाहिए होता है, वो है हमारे माता पिता। ये दुनिया का वो रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के बस देता ही चला जाता है। और कहीं अगर हमने दो शब्द प्यार के जो बोल दिए या थोड़ा सा समय उन्हें दे दिया, तो उनके लिए तो ये किसी बड़े उपहार से कम नहीं। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ पलट के आता है। इसलिए ये कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा, कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये तो थी हमारी एक बात दोस्तों, और अब गुनगुनाते हैं हमारे इन दोस्तों की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। नाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, मुमताज अमान, आफिया, सामिया, नीलोफर, शन्नू और शब्बो, इसी गीत को सुनना चाहते हैं अल्मोड़ा से दीपक नगर कोटी। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं, आवाजें हरिहरन, घनश्याम और संतोष की। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सच है दोस्तों, अगर ईश्वर को देखना है ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने माता पिता को देख लीजिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा, और नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद रोतावर की पसंद पर दबंग फिल्म से। गीत को आवाज़ दी है राहत फतेह अली खां और साथियों ने।

दोस्तों आंखें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं हमारे शरीर का। देखिए ना, मौसम बदल रहा है, इसमें हम आपसे यही कहेंगे कि अपने शरीर के साथ साथ अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखिएगा। सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत तेरे नाम फिल्म से। गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने, रचनाकार समीर संगीत।

कर हिमेश रेशमिया और इस गीत को सुनने की अभिलाषा है आप सभी को। मेहरी नगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता, और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित गंवाड़कर और कुमारी ध्वनी गंवाड़कर ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। यही गीत आप सबके लिए। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, हमारे सभी कार्यक्रम भी आप सभी श्रोताओं के नाम, क्योंकि हमारा तो भाई वजूद ही आपसे है। इसलिए जल्दी से अपनी फरमाइश हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर, या आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड है 263601। कार्यक्रम का अगला गीत गीत फिल्म से। गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सरगम में बांधा है कल्याण जी आनंद जी ने, और सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवकिशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन और इनके घर के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। और यही गीत आप सभी के लिए शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर गीत फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत प्रिंसेस गीत के बाद कार्यक्रम के समापन में जल्दी से शामिल करते हैं एक और गीत जिसे सुनना चाहते हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीजी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल इसी गीत को सुनवाने के लिए एक और फरमाइशी पत्र हमें मिला है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया का। आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए हेलो ब्रदर फिल्म के संगीत के साथ अब आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं कुछ बातों और ऐसे ही खूबसूरत गीतों की माला पिरोए अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। लेकिन इस वक्त आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में आपके लिए लेकर सुगम संगीत।

आपके अनुरोध पर अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

हेमा सरदेसाई से अभी आप एक गीत सुन रहे थे। गीत के रचनाकार थे समीर। आइए सुनते हैं मदन पाल की लिखी गजल, जिसे आवाज दी है चंदन दास ने।

सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। प्रोग्राम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश अलीगढ़ी का की लिखी नज्म, जिसे आवाज़ें दी हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

गुलाम अली की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे और अभी से के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन अभी भी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मिलते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

स्वीकार किया मैंने। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। गीत लिखा था नीरा फाजली ने, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

कार्यक्रम का अगला गीत वक्त फिल्म से आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की हैं, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और ध्वनि रवि की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। दीदारे यार फिल्म में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए दीदारे याल फिल्म के इस गीत के बाद अब आज के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। लता मंगेशकर के गाए सौदागर फिल्म के इस गीत से गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सौदागर और अब इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।